रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए, कबहू न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ताना। पापी का कर अग्नि माहे, जलत रहे मिटवे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए।

पास जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो पज पर है गुर की सरना कहत नाम दियो इहो विचार इन विद संतो उतरो पार संडा मर कह जाए पुकारे पड़े नहीं हम ही पछारे राम कहे करताल बजावे चटिया सब है।

पर फड चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूं मैं सुरत विसार, हूं मैं मार विचार मन, गुण विच गुण लै सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

पहला सगल पवन तेरी माया मोह मैं अवर नदी सह सर्व तो हो तू सुरनाथा देवा देव हर नाम मिले गुरु चरण सेव मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल गुरुमुख राम नाम गुण गाए तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ बिन साध ना पाये हर का संग बिन गुरु मैल मलीन अंग बिन हर नाम ना सुध

गुरमत उत्तम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिसरस रे मन राम बोल, अपरंपर अगम अगोचर गुरुमुख, हर आप तुलाए

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहो पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

सालग्राम बिप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला।

तीजा राते साथ हर नाम निहाला दया करो प्रभु दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोए ज्यों पावे त्यों राखे सोए गुरु गोपाल मेरे मन पाए रह न सकूं दर्शन देखे।

अंकारे गुर राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

गुर कै शब्द रहा परपूर जी जंत की करे प्रतपाल गुर प्रसादी सब समाल दर्शा चै पथरों कर जाए नानक नाम बढ़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एक को वेख है और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनो एक दिखाया मेरा प्रभ मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभ साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसे

जे हर जीव भावे सदा सुख शरीर पाने चित लावे अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए नानक नाम वसै मन आए बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाए मन तन हरिया सतगुरु भाए सफल्यो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुभाए सच फल लागे सतगुरु भाए रहाओ आपे नेड़े आपे दूर गुर कै शब्द देखे सद हजूर छावकणी फूली बन राए गुरमुख बिगते सह सुभाए अन दिन कीर्तन करे दिन रात सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात परपंच वेख रहा विस्माद गुरमुख पाये नाम प्रसाद आपे करता सब रख भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिल ना तमाए नानक मिलिए शब्द कमाए बसंत महला तीजा पूरे पाग सचकार कमावे एक पोचे तय फिर जून ना आवे सफल जन्म इस जग में आया सच नाम सहज समाया गुरमुख कार करो लिव लाए हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ तिस जन की है साची बाणी गुर कै शब्द जग माए समाणी चहु जुग पसरी साची सोए नाम रता जन प्रगट होए एक साचे शब्द रहे लिव लाए से जन साचे साचे भाए।

होए जिन सच सेविया तिन रस पाया नानक सहजे नाम समाया बसंत महला तीजा भगत करें जन देख हजूर संत जना की पग पंकज धूर हर सेती सद रहे लिव लाए पूरे सतगुरु दिया बुझाए दासा का दास गिरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ एक को सेवो अवर न कोए जित सेवे ऐसा सुख होए ना ओ मरे ना आवे जाए जिस बिन अवर सेवी क्यों माए से जन साचे जिनी साच पछाणिया आप मार सहजे नाम समाणिया गुरमुख नाम प्राप्त होए मन निर्मल निर्मल सच होए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच सबद प्रभ एक सियान हर रस चाखे ता सुध होए नानक नाम रते सच

जीवत मरे मर मरण सवार है, गुरु कै शब्द साच उधार है रहाओ। गुरुमुख सच पोजन पवित्र शरीरा, मन निर्मल सद गुणी गहीरा, जब मैं मरे ना आवे जाए, गुरु प्रसादी साथ समाए, साचा से वो साथ पछाने, गुरु कै शब्द हर दर निशाने, दर साचे सच शोभा होए, निज करवासा पावे सोए, आप अपूल सच्चा सच सोए, और सब पूले दूजे पथ होए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच समाणी, बसंत महला तीजा, बिन कर्मा सब परम पुलाई, माया मोह बहुत दुख पाई, मन मुख अंधे ठौर न पाई, बिस्ता का कीड़ा बिस्ता माए समाए, हुकम मन्ने सो जन प्रवान, गुर कै शब्द नाम निशान, रहाओ साच रते जिना तुर लिख पाया।

पल्ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसै।

शांत न होए बहु अभिमान अपनी पख होए सेवट पागी जिन शब्द पछाणिया बार जांदा कर मैं आणिया कर मैं वक्त अगम अपारा गुरमत खोजे शब्द बिचारा नाम नाम निद पाई कर ही माए सदा रंग राते सच समाए आप करे किछ कर न जाए आपे पावे ले मिलाए तिसते नेड़े नाही को दूर नानक नाम रहा परपूर बसंत महला तीजा गुर शब्दी हर चेत सुभाए राम नाम रस रह अगाए कोट कुट अंतर के पाप जल जाहे जीवत मरे हर नाम समाए हर की दात हर जियो जाने गुर कै शब्द एहो मन मौलिया हर गुण दाता नाम वखाण है रहाओ भगवे वेश प्रम मुक्त न होए बहु संजम शांत न पावे कोए गुरमत नाम प्राप्त होए वडपागी हर पावे सोए कल में राम नाम वडियाई गुरपुरे ते पाया जाई नाम रते सदा सुख पाई बिन नामे हों मैं जल जाई वडपागी हर नाम बिचारा छूटे राम नाम दुख सारा हृदय वस्या सो बाहर पसारा नानक जाने सब उपावन हारा बसंत महला तीजा इक तुके तेरा किया किरम जंत देता जापी आदमंत गुण आस विचारी मेरी माए हर जप हर कै लगो पाए रहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवावो वैरवाद गुर कृपा की नीचू का अभिमान सहज पाए पाया हर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक बखाण है साच नाम बसंत महला तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिय पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एको एक सब आख बखाने हुकम बूझे ताए को जाने कहत नानक हो मैं कह न कोए आखन वेखन सब साहिब ते होए बसंत महला तीजा सब जुग तेरे कीते होए सतगुर पे तै मत बुद्ध होए हर जियो आपे लहो मिलाए गुर कै शब्द सच नाम समाए रहाओ मन बसंत हरे सब लोए पले फुलिये राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे उदारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे पाग हर पगत कराए इस मन को बसंत की लगे न सोए ए मन जलिया दूजे दोए रहाओ यो मन तंदे बांदा कर्म कमाए माया मूठा सदा बिन लाए यो मन छूटे जा सतगुरु पेटे जम काल की फिर आवे ना फेटे ए मन छूटा गुरु लिया छाए नानक माया मोह शब्द जलाए बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए ए जी जंत फूले हर चित लाए इन विद ए मन हरिया होए हर हर नाम जपे दिन राती गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ सत गुर पानी शब्द सुनाए ए जग हरिया

मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मिलावा होए राग बसंत मैला चौथा हर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ज्यों पसरी सूरज किरण जोत त्यों कट कट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्व थाए गुर शब्दी मिली है मेरी माए रहाओ कट कट अंतर एको हर सोए गुर मिली है एक प्रगट होए एको एक रहा परपूर साकत नर लोभी जाने दूर एको एक वर्ते हर लोए नानक हर एको करे सो होए बसंत महला चौथा रैन दिनस दोए सदे पए मन हर सिमरो अंत सदा रख ले हर हर चेत सदा मन मेरे सब आलस दुख पंज प्रभ पाया गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ मन मुख फिर हो मैं मोए काल दैत संगारे जमपुर गए गुरमुख हर हर हर निम लागे जन्म मरण दो दुख पागे भक्त जना को हर कृपा धारी गुरु नानक तुखा मिलिया बनवारी बसंत हिंडोल मैला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सतगुर मिले तां खोजी है मिल ज्योति ज्योत समानी माधो साधु जन देओ मिलाए देखत दर्श पाप सबना से पवित्र परम पद पाए राव पंच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तब पकरे तन साबत रास उभरिया पाखंड परम उपाव कर थाके रिद अंतर माया मा

साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे, गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विकमल परया।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस गी दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिरी दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर दी दे।

जन जपियो नाम निरंजन नहर, उपदेश गुरु हर प्री दे, जन्म जन्म की हूँ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नी दे, हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे, बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है, गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाग लगाई है रहाओ, कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह ना सकाई है, ज्यो ओडा कूप गोज खिन काडे, ज्यो सतगुर वस्त लहाई है, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाई है, मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाई है, बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकरे काल सुलुंज, गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुन्य, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस पुंज, राव सत संगत साथ दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज, हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तारो रिद अंतर स्वामी, सत संगत मिल बुद लंज।

पग थारा दें जोग जुगत, नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक, तृष्णा बूजी गुर प्रसाद, मन आधा ना हर रसें स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला।

तरों टेक सर्व कला प्रभ तुम पर बीन अंत न पावे जलह मीन अगम अगम ऊंचे ते ऊंच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से।

भूख न लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए ए पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन अर्था।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस। किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग। गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उर्धारे। सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत पत नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत पछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यो सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवा, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा। प्रभ रखवाले माई बाप, जा कै सिमरन नहीं संताप। खसम त्याई इक मन इक भाए, गुर पूरे की सदा शरणाई। साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ, अपने जन प्रभ आप रखे। दुष्ट दूत सब प्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए। दुख देश दुसंतर रहे ताए, किर्त ओना का मिटस नाहे। ओए अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए। जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतन आप। अखंड पूरन जाको प्रताप, गुण गोविंद नित रसन गाए। नानक जी वह हर चरण ध्याए, बसंत महला पंजवा। गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया। सर्व मनोरथ पूरन काम, जप जी वह नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवे, बिन सत गुरु दी सै बिल लांती। सापत फिर आवे जावे रहाओ।

तब कियो निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मैयल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अस्त सिद्ध नवनिद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल प्रगास, बसंत महला।

सगल इच्छा जब पुनिया प्रभ मेले चिरी विछुनिया तुम रवो गोविंद रवन जोग जित रवे है सुख सहज भोग रहाओ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया।

नानक प्रभ कृपा भई बसंत महला पंजवा। रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांस सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप।

सुखदाता जपदे नीत नीत बसंत महला पंजवा हुकम कर कीने निहाल अपने सेवक को पया दयाल गुरपूर सब पूरा किया अमृत नाम रिद में दिया रहाओ कर्म कर्म मेरा कछना बिचार्यो बां पत्र पव जल निस्तार्यो प्रभु काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरणी परे आप करें आप करने हारे कर कृपा ना।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास्कु।

दुबदा दूर करो लिवलाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। इन विद पासा तालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती। अंतकाल न लागे पीर रहाओ, तरम तरम तुम चौपड़ साजो।

कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया। जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने, और न दूजा जाने। जिसनों कृपा

है भाणा कहो नानक कह तया द्वारे रख ली वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पंजवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभु।

या जानो या पीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महल

के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकियां इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम विसार।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला, मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नह अस्थिर दिसे एक

तू अपुल ना पूलो कदे ना है, गुर शब्द सुनाए मत आगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह से पर हर दोए, दूर दर्द मत अमृत खाए।

किसे न भावो, नानक हों मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणों मरिए करतारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर भगती सचना

व्यापे खट खट रव रहा प्रभ जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला हित तुकिया मत पसम अंधू

बेमोहताज बेअंक अपारा सचपति जय करने हारा नानक फूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पौरा फूल बेल आपे संगत नीत मेल ऐसी

तू अकल निरंजन परम हीर, तू आपे करता करण जोग, ने केवल राजन सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद, बसंत हिंडोल मैं

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरत सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिलोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाये।

करता, आपे जल अपवंतर करता, आपे मेल मिलावे, नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जलह समावे। बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुकिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार, बाल्मी कह होआ साध संग, त्रू को मिलिया हर निसंग, तेरिया संता जांचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन। रहाओ गन का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक, विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद, बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार, बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए, प्रहलाद रखी।

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहाओ संत।

मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईठ मीत को सखाना है। आप बीज आपे ही खाए, जाके की ने होत विकार, से छोड़ चले आखिन में गवार, माया मोह।

अपार कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरणाए। बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम से आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिण त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम फिर बहुर न ताई। पंजे बद्दे मां बली कर सच्चा ढोआ, अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम से आयदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजिया नाम का।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगता की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पद राम नाम।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव सह कबीर को लखे न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माँ दो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद कब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो।

बैठ पाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी तारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

रे जिन सकल विकल प्रमुखाते मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुरु का शब्द काटे कोट करम बसंत बाणी नाम देव जी की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे चरण कमल मेरे हीरे बसे रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे तैसे संत जना राम नाम ना छाडे गंगा गया गोदावरी

कोट कहरव दास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूछट ऊपर चमक बाल इस घर में है सो

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभिमान ना

हर के संत जना की हम धूर, मिल सत्संगत परम पद पाया, आत्म राम रहा भरपूर रहाओ। सतगुर संत मिले शांत पाये, दिल विच दुख काटे सब दूर, आत्म जोत पई पर।

आप वसै मन आए, गुरु कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर जाया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए।

मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी। हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी। पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण।

पंच शब्द वद पाग मथोरा, तीन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो, मन बचन कर्म हर

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पी है जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कर पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतिपालक भगत वत्सल हर नाऊं जाको कोई

आन उपाओ न को सूजे हरदासा सरणी पर रहा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले अवगुण मेट तरहा। सार महला पंजवा माई पीर रही प्रे बहुत विराग।

चरण वंदना अमोल दास रोदियो, साध संगत अरदागियो, करो कृपा मोहे प्रभु मिलावो, निमख दर्श पे खा गयो, दृष्ट पई तब पीकर आयो, मेरा मन अंदिन शीत लागयो, कहो नानक रस मंगल गाए, शब्द अनाहद बाजियो, सारंग महला पंजवा, माई सत

सब आपद जय गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महा प्यान उद्यानद जहां कीर्तन साध संगत

पाए। जो जो शरण पर्यो करणानिद ते पाए तराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए।

अवर सब फूले प्रमत न जानिया, एक सुदाखर जा कै हृदय वस्या, किन बेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेता किस हो।

जगदीशें। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जा कै लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, अन दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लइए रहाओ। आवो संत प्राण सुखदाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

गुर प्रसाद नानक संतोखे, नाम प्रभु जप जप उदरन, सारंग महला पंजवा, गायो री मैं गुण निद मंगल गायो, पले संजोग पले दिन अवसर, जो गोपाल री जायो रहाओ, संते चरण मोर लो माथा, हमरे मस्तक संत

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई। दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन ना रहे बहुविध उमकाई रहाओ। चितवन चितवो

राय राव अनेक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म गुलवाई गर्भ जोन छोड़ जो निक्षो तव लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

तो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाई, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अलक रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछरत होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहां लुभाइए आन कहो, ईत ऊत प्रभु सदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग शोक तेरे मिटे सदा।

लाए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उदारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ठ से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी तूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम से आए एक पलक सुख साथ समागम कोट बैकुंठ पाए।

जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई वड भागी मन तन होए विलासा।

मोहन कार्यावो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो, फूल चूक तेरी प्रक्रिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही, परम परम दुख परिया, होए कृपाल गुर लाहे पार दो, मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी, जानो कोट दिन सलख बनिया, साध संगत की पीर जो पाई, तो नानक हर संग मिरिया, सारंग महला पन्यवा, अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा रहा।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दया।

मेरे मन सीत आए प्रिय रंगा, बिसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा। रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो, हर पाया सत्संगा। ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम, सुख पाए मुख मंगा। प्रियो अपना गुर बसर दीना, पोगो पोग निसंगा। निरपो पै नानक पौ मिटिया, हर पायो पाठंगा। सारंग महला पंजवा, हर जियो के दर्शन को कुर्बानी। बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे, देहा प्रिय अंक समानी। रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन, हर पायो सुगुर सुजानी।

आन संताने कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लोकानी सारंग महला पंजवा अब मेरो पंचाते संग टूटा दर्शन देख।

आया हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपै व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रे बोला गुर बाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ।

जन नानक के प्रपुरख विदाते मेरे ठाकुर अगै अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख उपाय समावे देख चरित मन मोहन रहाओ जिस सुने मन होए रहस अत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बन आई प्रभ तोहं किलविथ गए मन निर्मल होई है गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करण कारण समर्थोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखो चलत तमाशा सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा खिन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा अंग कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श के सुख

हृदा पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत दूरावा सर्व निधान नाम हर हर के जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक को गुर पूरा पेट्यो सुख से जे अनंत बिहावा सार महला पन्नवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे कहाँ कहाँ तू रखा रहा अंधकूप गृह में तिन सिमरियो जिस

गुरमिल ऐसे प्रभु ते आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमख न बिसरे करी न बिसरे।

और द्वितीय आकाश विराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे में रह माते। सो नानक मैं

पयो दयाल कृपाल दुख हरता, संकन सो बनाए सगल निधान करे में पाए, कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा, ओं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तो बचन दियो मेरे सतगुर तो मैं साज सिगरिया रहाओ, हम भूले

न्यायी जैसे मात पिताए किस बिन निमक नहीं रह सकी है बिसरना कब हूँ जाए। कहो नानक मिल

की जय। सुखदाता प्रभु ध्याय यह रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद पाये।

तब अरोग जब तुम संग बसतो सुटकत होए रवारे कमन बसेरो दास दासन को खाप्यो थापन हारे नाम न विसरे तब जीवन पाये बिनती नानक हि सारे सारंग मेला पंजवा मन ते पै पौ दूर परायो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुर बचनात कमात कृपा ते बहुर न कथु उधायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वछल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे कहो नानक आप अपायो सारंग महला पंजवा।

अपने पे मान अपने पे ताना अपने ही पे अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुर पाए।

मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या पोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संते की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जियो आन जंजारी रहाओ ज्योस चार के दिशे संगी ऊहा नाही जह भारी तिन स्यों राज मात हित लायो।

देवन हार बिसारे वंदुले जो सफरी उदर भरे बह हाटुली साध बिकार बिकार चूठ रस जै जानो तै वीर बातुली कहो नानक समझ रे आने आज काल खुले तेरी गांठली सारंग महला पंजवा गुरजियो संग तुम्हारे जानियो कोट जोत ओआ की बात ना पुछिए ता दरगे भी मान्यो रहाओ कवन मूल प्राणी का कहिए कवन रूप दृष्टानियो

जन का संग पाए वडभागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग।

कहो नानक जिन जगत ठगाना, सो माया हर जन ठागे। सारंग महला पंजवा, अब जन ऊपर को ना पुकारे, पुकारन को जो उदम

साध की संगत विनस्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

तिस गुर कह जाइए बलिहारी, सदा सदा हो वारिया रहाओ। गुर का नाम जपियो दिन राती, गुर के चरण मन धारिया।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर।

अनद अनद गुण गाया, बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की गत ठांडी, वेद पुराण सिमरत साधु जन, खोजत खोजत काढ़ी, रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

प्रभ जी मोहे कवन अनाथ बिचारा, कवन मूल से मानुष करया के ऊपर ताप तुहारा रहा। जी प्राण सर्व के दाते गुण कहे न जाए।

आवे राम शरण वडपागी, एकस बिन किछ होर न जाने, अवर उपाव त्यागी रहाओ। मन बच कर्म अरादे हर हर, साध संग सुख पाया, अनद विनोद अकप कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकि उत्तम बाणी, साध संग नानक निस्तरी है, जोरा ते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु शरण गही, सांस सहज मन पयो परगासा।

जीव प्राण आधार तेरा, तून था में थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, वैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा।

गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाये, सगल कटा आधार नानक वाहो वाहो कहो ताको, जाता अंत न पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब ने रह रहाओ। बंधन तोर राम लिवलाई, संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या देखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कह मुख लागै का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ विशेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम।

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान, सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिरस जाए अभिमान, सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे

बिखै रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीवन, हर रंग रांग पै मन लाला, राम नाम रस खीवन। ज्यों मीना जल स्यों उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चात्र

चरण कमल अस्थित हृद अंतर, पूजा प्राण को आधार, प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती, कृपा अपनी धार, नाम निधान उचरो नित रसना, नानक सद बलिहार, सारंग महला पंजमा, हर के नाम हीन मत थोरी, सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर, मिलत अंध दुख को

करना है। जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु ऐला है। चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए। सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सूखा सिमर।

दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए सारंग महला पंजवा जीवत

कर जोड़ नानक दान मांगे, साध संग उधार सारंग महला पंजवा, विराजत राम को प्रताप, आद ब्याद उपा

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना फही। सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो देख दयाल अनंत सुख पूरन।

महला पंजवा। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोविंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान रहाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे, बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल हुए।

प्रवति आए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाए।

दुतिया पाओ सब लूहराओ, त्याग गोपाल अवर जो करना, ते बिख्या के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो, काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता, बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक, मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

जोर नानक शरण कृपा निध सागर बिनस्यो आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की तुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कट धोए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए परा

हर पज आन कर्म विकार, मान मोह ना बुझत तृष्णा, काल ग्रस्त संसार रहाओ। खात पीवत हस्त सोवत, औद बिति असार, नरक उदर परमंत जलतो।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार कर जोर नानक।

पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग।

कास्यो न्यो लगाई, जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यो बादर की चाही, तज अभिमान शरण संतन गो, मुक्त हो है चिन्माही, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही, सारंग महला नावा, कहा नर अपनो जन्म गवावे।

या तन साचो कर मान्यो ए बिद आप बंगावे जन नानक सौ जन मुक्ता राम भजन चितलावे सारंग महला नावा मन कर कबू ना हर गुण गायो विख्या सख्त रहो निस्बासुर कीनो अपनो भायो रहाओ।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों, जीवा हर गुण गाई, गुर के शब्द रता बैरागी, निज कर ताड़ी लाई, सुद रस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाय निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी अनपौ बिसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नहीं केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन में अवर न जाना, सतगुरु बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

आवागौन निवार सच राते, सात शब्द मन भाया, सतगुर सेव सदा सुख पाये, जिन विच्चों आप गवाया, साचे शब्द सहज तुन उपजे, मन साचे लिव लाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई, एक समय सब जग तो वरते, विरला एक पछाने, शब्द मरे ता सब किछ सूजे, अंधन एक को जाने, जिसनो नदर करे सोई जन बूझे, होर कहना कठिन न जाई, नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा। मन मेरे हर की अकथ कहानी, हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर ले जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्द बहुरानिया। हर नाम नामे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब जग

अगम अगाद सुनो जन कथा, पार ब्रह्म की अचरज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुरु नमस्कार, गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन पीतर होवे प्रगास, ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश। मितना ही जा का विस्तार, सो बाता की अपर अपार।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थिरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देशा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो।

कर कर करता करे करे मनमुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजे लोभाया कूड़ कपट कमाम दे कूड़ो अलाया पुत्र कलत्र मोहित है सब दुख समाया जम दर बद्दे मारिये परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर भाया श्लोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाई है गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग स्यों।

जिनको दितिया तिना मिले पंडार। जै पंडारी हूँ गुण निकले ते की है परवान, नगर तिना को नानका ना।

मूरख अंधिया अंधी तात कह कह कहन कहायन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख न जापी आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जापे रूत न जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख न जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामे वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिव लाई श्लोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की पेदी झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई झूठ ना मिहो वरे ऐ सब थाई झूठ ना तरती झूठ ना पानी झूठ ना पौने माई समानी नानक निगुरिया गुण

किस ऊपर ओ टिक टिके, किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका, किसनो करता दे, हुक्म रहाए अपने।

पौड़ी नाय मने दुर्मत गई मत प्रवती आया नाव मने हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मने नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मने सांत उपजे हर मन वसाया।

ता नानक कहिए मूरत कौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाणे जो चले हर से पीर लिया, जमकाल जो न सके कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया। श्लोक महला पहला सच वर्त संतोष।

बलवंश कर उपाव माया हिर आणया, जमकाल निहाले सास आव कटे बेतालिया। नानक गुर शरणाई उबरे हर गुर रखवालिया। श्लोक महला तीजा। पर पर पंद्रह

वस्त पराए आप गर्व करे, मूर्ख आन गनाए, नानक बिन बूझे किन्ह न पायो। फिर आवे जाए महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना विछड़े कबहू, जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया, सगले दुख निवारे, हर सुख दाता सदा।

होवई। नाम वसे मन आए बिन नामे जे होर खाना चित रोग लगे तन खाए। नानक रस्ता सब सलाहना आपके ले मिलाए महला तीजा जिया अंदर जियो सब।

हर्त से त्यागो संत जनो जो अंत ले चलाए। हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए। जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए। जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दयाल।

आप छोड़ सरनाए पवै मन ले रजाए। गुरुमुख जम डंड ना लगे हो मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सच रह लिवलाए महला तीजा। दात जोत सा

करो बिनो गुर अपने प्रीतम हर बार आन मिलावे सुन तन कोर शीतल मन मोरा लालवती गुण गावे बरसतना में।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जब को तप ही आया, दिष्टा कीत पय उत ही ते, उत ही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाई।

जिन तन तिरका साब न जानिया साबिल को बदन कुमलानी। कई निराशी कर्म की फांसी बिन गुर कर्म तुलानी। बस करा मेरा फिर कर आया बल जावा गुर अपने प्रीतम। जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ नौतन प्रीत सदा ठाकुर से। हम जिन भगत सुहावी मुक्त पाए गुर दर्श दिखाया। जुग जुग भगत सुभावी हम सारे त्रिभुवन जग तुम्हारा। तू मेरा हो तेरा सतगुर मिले निरंजन पाया। दौड़ न पव जल फेरा अपने पिर हर देख विदासी। तो तन साथ सिगारो अतुल निरंजन सो सत साची। गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले। सबद सुरत पट पाई नानक राम नाम हृदय अंतर। गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार। पर दारा पर तन पर लोबा हों मैं बिछै बिकार। दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार। महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे। जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दोष।

एन सुलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता दे मनहार। गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नजर करे करतार। काया महल मंदिर कर हरता तिसने राखी जोत अपार। नानक गुरमुख महल बुलाये।

सुरता पंडित का कहनाओ। गुण गोविंद ना जानिए माए, अंडीठा कुछ कह न जाए, क्या कर आँख बखानिए माए रहाओ, ऊपर बर समान पे आले।

तेन से अंतर है निर्माए, सोई पुरख जे सच समाए, जा पुलीन सेवक जे होए, ताता कहना कहो न कोए, विस्नाती सेवक होए, नानक पन्या पहरा सोए, मल्हार महला पहला, दुख बिछोड़ा एक दुख पूख, एक दुख सतवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन काए, वैद ना कोले दारू लाए।

मानसता तल तत्म सासे सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाए।

जिस ते होआ तिसे समाना, चूक गया पासारा मलार महला तीजा। जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए, सच्ची भगत करें दिन राती सच रहे लिवलाए। सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए, मन रे हुकम मन सुख होए प्रब पाना अपना भाव दा। जिस बच्चे तिस बिघन न कोई रहाओ, त्रै गुण सबा पात है ना हर भगत न भाए। गत मुक्त कदे न हो वही हो मैं कर्म कमाए, साहिब पावे सोथी है पये किरत फिराए। सतगुर टूटिए मन मर रहे हर नाम वसे।

है, हर हर नाम अमृत है, नगरी पाया जाए। हम दिन हर हर उच्चरे, गुर के सहज सुवाए, नानक नाम निधान है, नामे ही चुकलाए, मल्हार महला की जाए, गुर सावाही सदा सुख दाता।

एको एक वसे मन स्वामी दूजा और न कोई एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार हों मैं मार सब मन वसाया हर राख्या उधार जिसे बुझाए सोई बुझे।

सुख अंतर सदा निभै तेरे आल राव। मन मुक्ता ठंड कदे न चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ए वेला सुर हाथ ना आवे हम दिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे न बूझे विस्ता मैं समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याया।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

एहो मन गिरही के एहो मन उदासी के एहो मन अवरण सदा अविनाशी के एहो मन चंचल के एहो मन बैरागी इस मन को ममता कित्थों लागी।

वेद की फिरकूक न होए मलाल न लाती जा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई जम काल मारे नित पत गवाई सतगुरु सेवा जम की काम चुकाई हर प्रभु मिलिया महल कर पाई प्राणी गुरुमुख नाम ध्याए जन्म पदार्थ दुविधा खोया कौडी बदले जाए रहाओ कर कृपा गुरुमुख लगे प्यारे अंतर पग पे हर हर उधार पव जल शब्द लंघावन हार दर्शा चै गुस्से सचार बहु कर्म करे सतगुरु नहीं पाया बिन गुरु परम पूले बहु माया हों मैं ममता बो मोह वधाया दूजे पाए मन मुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुरु शब्दी जपिया सतलाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम।

हों तुन जम के सब लागो पाए, हों जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंबा तर्क निहाए, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम ले लाई, पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वह सह सुहाए,

रखना नाम सब कोई कहे, सतगुरु सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर वह, मेरे मन काहे रोष करी जाए, लाहा कलज गुराम नाम है, गुरमत अंदन हृदय रवी जाए, रहाओ बाबी हाँ खिन खिन दिल लाए, बिन फिर देखे नींद न पाए, यो विछोड़ा सहा न जाए, सतगुरु मिले का मिले सुमाए, नाम ही दिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया पूख

अंदिन हर हर त्यायो हृदय मत गुरमत दूख विसारी सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभु कृपा धारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो किस विधवा कर महतारी हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस एनस हर उधारी गुर दीखे गुर का सुख बिगसे जो बारक देख मैं तारी तम फिर का एक ही संगवासा विच हो मैं तीर्थ करारी गुर पूरे हो मैं तीर्थ तोरी जन नानक मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किल विच मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथियानी केदार थाप्यो महसारी काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर जन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

दू तूर दे हर पार लंघाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे उसकी पूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उतरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचने करण सुन ध्यावे अव सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर पूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की पूख करे।

ऐसे सतगुरु कहिए हर हर कथा सुनावे तुस गुरु को छादन पूजन पाठ पतंबर बहु विदे सत कर मुख संचो तुस पुन की सिर कोट नावे सतगुरु देव प्रतक हर मुहूर्त जो अमृत बचन सुनावे नानक पाग पले तुस जन के जो हर चरणी चित लावे मल्हार महला चौथा जिनके हीरे बसियो मेरा सतगुरु ते संत पले पल पांत तिन देखे मेरा मन बिगसे हों किन कह सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिन की तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रस्थांत रहाओ हर के दास साध सख

इतनानी हर हृदय के कपटी नरमित कपट तमाक तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा खगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अंदिन अंध भया।

0: तिन संगत हर मेलो करमया, तिनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया, जो अनदिन हृदय नाम दिया है, सब जान तिना का सफल भया, ओए आप करे सुष्ट सब तारी, सब कुल भी पार कया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वश कर लया, जन नानक तो प्रभु कृपा धारी, दिख दुबदा पाव लया।
1: मल्हार महला चौथा, गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, कृष्णा भूख न जाय, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेते, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहा, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मदन, लोभ लहर दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृगमीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं और। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंख को बतावे, हों पा कह पाई लागी। रहाओ हर हमारो मीत सफाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मन मोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौथ दे कर पहला इको अंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ता को कहो परवाह काहू की, जी गोपाल सहाय। बरसे मेघ सखी कर पाहुन आए, मोहिदीन कृपा निध ठाकुर। नव निध नाम सुनाए रहाओ, अनेक प्रकार।

खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाई सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभु दाता फूले बारक अनेक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी नव निद नाम निधान गृह तेरे मन बांसे सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभु चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना मनार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरम्भियो करका ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी पोर पया मैं प्रेह मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो पगत करो निर पाए जब प्रे आए बसे

गुर कारज हमरे पूरे कहो नानक वर मिलिया सुख दाता छोड़ न जाई दूरे मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का ती हरते हर बिसरते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमय बहुजोनी एक न काहू तरते रहा।

जगन में जरते नानक शरण चरण कमलन की तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी हूँ एक खिन तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी रहाओ उनके संग मोहे

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओठ जीवे दास तेरे नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहाओ। जय जयकार की नो सब जग में, दया जीवन में पायो, कंठ लाए अपनो दास राख्यो, ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी, प्रम को मेट सुखायो, महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो। राग मल्हार महला पंजवा, चौप दे कर दूजा इको अंकार, सतगुर प्रसाद। गुरुमुख दीसै ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सांस गिरास अपना खसंतिया।

गुर पेटे ना हुए जोन अवतार, गुर की सेवा सो जन पाए, जासो कर्म लिखिया तुर आए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सत गुर शरणाई, नानक गुर पार।

भगत जोत उदपाणे नानक तिनके सब कुर्बाणे मलार महला पंजवा परमेश्वर होआ दयाल मेघ वर्षे अमृत धार सगले जी जंत तृप्ता से।

सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, प्रम को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड अवर न कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए, जन्म मरण दुख तेरा खे।

सो मन निर्मल जो गुर संग राची गुर पूरा पाए वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग।

गुरमन आर प्रय दे आर स्यों रंग किया की नोरी सगल सिंगार तजोरी सगल विकार ताव तो अस्थिर थी आ रहा ऐसे रे मन पाए कै आप गवाए कै कर साधन स्यों संग बाजे बजे मृदंग अनाहद कोकिलरी राम नाम बोले मधुर बैन अक्सोहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ।

नानक प्रयो प्रीतम किया मलार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाहा रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे अज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मलार महला पंजवा गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विस्मय विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण द्वारे मलार महला पंजवा बरस सरस आ गया हो है आनंद सगल भाग रहाओ संत संगे मन पर फड़े मिल मेघ तर सुहाग कन कोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला पंजवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

मिलाए शात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो तेरे बिल करे बिल लाए कम हर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाए मीन निवास उपजे जल ही ते सुख दुख पूर्व कमाए खिन तिल रह न सके पल जल बिन मरण जीवन तिस ताई तनवाडी तिर देश निवासी सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

गुर प्रसाद कर ही फिर पाया, कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला, जागत जाग रहे गुर सेवा बिन हर मैं को नाही, अनेक जतन कर रहे न पावे आच पाच टर पाही, इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बवरे, हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

दक्षिण ताई नदी उपकंठ जैसे कर करवर सर्पन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर करवर सर्पन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मन तन हेम पे सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाते तू सर्व जिया दयाला तुमरी शरण परे पत राखो साच मिले गोपाला बादी तंग अंग नहीं सूजे बदिक कर्म कमावे सतगुरु मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण देह साच बिन काची मैं पूछो गुर अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग सबद सुहाई रैन बबीहा बोलियो मेरी माई रहाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू जो तै पावे साई नींद गई हो मैं तन साकी सच मत हृदय समाई।

जुड़कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने, बीजो महल न जाते, सतगुरु बाजो।

फल पंकज में नाम छुड़ाए जे गुर सबक सिंजाते। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। नाम पै

मन मेरे हर हर नाम चित लाए, सतगुर ते हर पाए साचा, हर स्यो रह समाए रहाओ। सतगुर ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुर ते हर बुझिए गर्भ जोनी नह पाए।

गुर प्रसादी शिव कर जमे विचों सकत गवाए अचर चरै विवेक बुद्ध पाए पुरख है पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए लाहा हर सत्

वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे विचार बिन नावे जम दंड सह मर्जन में वारो वार सतगुर पेटे मुक्त होए पाए मोख द्वार मन रे सतगुर सेव समाए वड्डे भाग गुर पूरा पाया हर हर नाम ते आए रहाओ हर अपने पाने सृष्ट उपाय हर आपे दे आधार हर अपने भाने मन निर्मल किया हर स्यों लागा प्यार हर कै पाने।

तिस जेवड अवर ना कोई आपे बख्शे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब मारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे।

को पतियाए हर कृपा ते सतगुरु पाइए ते तैसे सुवाए मन मुख परम पुलाया बिन पागा हर तन ना पाए त्रै गुण सबा तात है पर करें विचार मुक्त कदे ना हो वही नौ पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना तुतही नाम ना लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित।

है। हर सिउं रहा समाए मल्हार महला तीजा अष्टपदी कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए दुख पल्लर हर नाम बसाए साची गत साचे चित लाए गुर की बाणी शब्द सुनाए मन मेरे हर हर सेव निधान गुर कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साथ समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीशरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

बिनवंत नानक शरण तिनके, जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा माल दे की तुन इको ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर मिले मन रहस्य ज्यो उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर करे सबर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठे लाल, कमल विग से सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द

ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंदर तरत विछोड़ चंगो आताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरंग विचार नावन पुरबाणिया तुझ सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म बड़ा कहाए अंत न पाया ना किस बाप न माए किंतु जाया ना किस रूप न रेख वर्ण सबाया ना किस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वर्ताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा ओला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्य रोगा कान जित दारू रोग उठिए पन सुख वसे आए रोग गवाए अपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंदे लाए आप छपाया।

पछाड़ मूर्ख कचिया, आप पैर मारे आप कार्य रचिया, सबना खसम एक है गुरुमुख जानिए, हुक्मी लिखे सिर लेख ऋण कलम मसवाणिए, सत संगत में लाप जिथे हर गुण स्वभाव खानिए, नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणिए। श्लोक महला तीजा, ऊनव ऊनव

जिन मन पाओ पाओ होए, नानक पै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए। महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग, नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कन पैस्यो मन पंग पौड़ी। दोवे तरफा उपाय इक वरत्या, वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या। परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रे बारिया। मन मुख कच्चे कूड़ियार तिनी ने चौदर गै हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया। सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आदाने आका

गुरमुख पद सों लेखा निबड़े बक्से सिर पंडार ओथे हथ ना पड़े कूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

जो हर चरणी रहे लिवलाए, जो जल में कमल अलिपत है, ऐसी बंत बनाए, से सुखिये सदा सोने, जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं, जो हर के अंक समाए, श्लोक महल आती जा।

आए सच्चा साहिब मन वसे सामन चिंदिया फल पाए नानक तिनका आखिया आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उधार हर अमृत पीवे सवा रंग राते होमे तृष्णा मार अमृत हर का नाम है वरसे कृपा धार नानक गुरमुख नगरी आया हर आत्म राम मुरार।

विचारिय गुण मेरे समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए जिसकी कीमत ना पवे कहना किछु न जाए हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ न पाए।

जल फल चौबीस वर्ष दा खाली को ठाव ना है। एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के ना है। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी। नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत ना पाया गुरमुख नाम के आए।

नील अनिल अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद पुख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा भाया, रखे रखन हार जिन शब्द बुझाया। श्लोक महला तीजा, इहो जल सब कै वरसवा, वरसै पाए सुवाए, से बिरखा हरि आवले।

अहम तन बहुत उपजै जा सहो करे रजाए जित ठा दे मन तृप्ति है जिया जुगत समाए ये तन करते का खेल है कदे आवे कदे जाए ज्ञानिया का तन नाम है सभी रह समाए नानक जिनको नजर करे ता इहो तन पल्ले पाए पौड़ी आप कराए करे आप हों कैसो करी पुकार आपे लेखा मंगसी आप कराए कार जो तिस पावे।

सब में एक वर्तदा। सिर सिर करे विचार, गुरमुख आप विचारी है, लगे सच प्यार, नानक किसनो आखी है, आपे देवनहार। श्लोक महला तीजा। बाबी हां इहो जगत है, मत को परम पुलाए, इहो बाबी हां पशु है, इसनो बूजन नाहे। अमृत हर का नाम है, जित पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुर न लागी आए। महला तीजा। मलार शीतल राग है, हर त्याय शांत

गुर प्रसादी को विरला बूझे, सो जन मुक्त सदा होए। पौड़ी सच्चा वे परवाह इको तू धनी, तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार जो पुल्ला मंजवणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने, महल देख अरदास पाए। अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुरा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रहन बोलिया, सहजे सच सुभाए। क्यों जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा ना जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए। पौड़ी खंड पताल असा

कोई इक राजे खान मलूक कहे कहा में कोई इक सदावे संत धन दूजे पट कोई इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई बिना में बाजारिया पीहावल होई पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसे गुरमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु के काल। महला तीजा बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निधान है असी अवगण यार जिस बक्से सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न विहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभु पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अग्गे कालिया कोई न सके जन काल सच्चा रखवालिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख विण नावे कूड़ियार फिरे बेतालिया पशु मानस चंप लेते अंदरों कालिया सबो वरते सच सच्चे सगर निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी

सुहाए ना पद कर आया, कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया, तीन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया, मन झूठे वे जात झूठा खाया, बिन शब्द आचार

लिखिया पाया श्लोक महला पहला। कुल्हा देंदे बावले लेंदे वडे निलज, चूहा छड ना मावई तिकल बन्ने छज। देन दुआई से मरे जिनको देन से जाहे, नानक हुकम न जा कई किथे जाए समाहे। फसल आहारी एक नाम सामनी सच नाम, मैं महदूद लिखाया खसने के दर जाए। दुनिया के दर के तिड़े केते आवे जाहे, केते मंगे मंगते केते मंग मंग जाहे। महला पहला सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पंच सै दाना खाए। डके फूके खीरे उड़ावे साहे गया पछताए। अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी। अब गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। सत्ता शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए। होए सताना पुरे न मावे साहे गए पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे। अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकबाली बैठाए। खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहारे सुख की तै दुख होई। गल्ला वाले हैं कनेरे छड ना सकते कोई। मक्खी मिठे मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे। तिन पौ सागर तरना पौरी अगम अगोचर तू तनी। सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार। जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार। इक नानो तुद एवे पांगा माया नाल प्यार। गुर के शब्द सलाहिए अंतर प्रेम प्यार। विन प्रीति पगत न होई विन सतगुर ना लगे प्यार। तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ताड़ी करे पुकार। जेहे दान संतोखिया।

किन सुख पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता दिन सतगुरु बूझ न पाई सतगुरु सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला शरण धर्म दोए नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तन लगे

दया जानिए कौजल तारण हार शब्द पछानिए चोर जार जुआर पीड़े खानिए निंदक लाए तबार मिले हरवानिए गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा नाव फकीर है पातशाहो मूर्ख पंडित नाओ अंधे का नाव पारखू एवं करे गुआओ इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला हरना बाजा कैसिकदारा इना पर्याना।

चुके चंगा नाम का विणना में मोहि गंद महला पहला राजमाल रूप जात जो बन पंजे।

पहला अजर जरे तानो कुल बंद पूजे प्राण होवे फिर कंद कहां से आया कहां यो जान जीवत मर्त रह परवान हुक्मे बूझे तत पछाने तिहु प्रसाद गुरु ते जाने होंदा सरी अग्नानक जान।

तू है मन भाया फाल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चलिया नचसी सतगुर बोत बेर सच्चा रखसी अगन पखे परहार अंदिन पक्षी फासा चुग गए चोग हुक्मी छुटसी करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म

करीम तू दरियाओ खुदाया, एक चीज मुझे दे और जहर चीज न भाया। पुराब खाम पूजे हिकमत खुदाया, मन तो आना तू कुदरती आया। सग नानक दीवान मस्ताना नित करे सवाया, आपस दुनिया खुनक नाम खुदाया।

रविया सब ठाई जित तू लाहे सचिया तित को लगे नानक गुण गाए सुध। राग मलार बाणी।

कर कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दामिना जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सार था ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जांचे दांगिया द्वारे चित्रगुप्त लेखिया कर्म राय परली प्रतहार सो ऐसा राजा श्री गोपाल जाके कर गण गंधर्व लिखी बपुड़े ताडिया गावंग।

गई हा पियो कहो रविदास पयो जल देखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नवा चौक दे महला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मेरा मन साध जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल साध जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम साध जना पग परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वस गत करिया, ज्यो जल तंत पसारियो बगत ग्रस, मीना वसगत खरिया। हर के संत संत पालनी के, मिल संत जना मल रहिया, हो मैं दुर्ग गया सवनी कर, ज्यो साबुन कातर करिया। मस्तक लीलात लिखिया तुर ठाकुर, गुर सतगुर चरण उर धरिया, सब दालद दुख पंज प्रभ पाया।

किल बिख दैन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध।

करी जगदीशर ते सब ऊंच हम नीच विख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभपात कानड़ा महला चौथा मेरे मन राम नाम।

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम बहु।

तान प्रीतम जन उत्तम जिन मिलिया मन होए प्रतीत परचय राम रविया कट अंतर अस्थिर राम रविया रंग प्रीत हर के संत संत जननी के जिन मिलिया मन रंग रंगीत हर रंग लहे ना उतरे कबहू हर हर जाए मिले हर प्रीत हम बहु पाप किए अपराधी गुर काटे कटत कटीत हर हर नाम दियो मुख औखद जन नानक पतित पुनीत कानड़ा महला चौथा जप मन राम नाम जगन्नाथ कुमन केर परे बिख बिखिया सतगुर काढ़ लिए दे हाथ रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पाथ काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लो तरे संग साथ तुम वड पुरख बड अगम अगोचर हम टूट रहे पाई नहीं हाथ तू परे परे अपरंपर स्वामी तू आपन जाने आप जगन्नाथ अदृष्ट अगोचर नाम ते आए सत्संगत मिल साधु पात हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपियो अकथ कथकात हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दासन को प्रभ करो कृपा।

गुण गावे गुरमत हो बलबले हो बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करें जे तुद पावीस जन नानक अमृत पी।

महला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुत तरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार

साधु सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करें प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला।

जाको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

रहाओ। अनेक पास कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर ध्यावो। कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा। कृष्ण ना बूझी बहुरंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया। पार ब्रह्म जब पहे दयाल, सहु नानक कौ

अनेक स्वांग का छे पेख तारी, जैसो सा तैसो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो, रहाओ मने प्रगास पेख प्रभ की शोभा।

लिप्त नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौजल।

गुन गाया बिन बूझे पशु की न्याई प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पू

सतगुरु प्रसाद। कथिए संत संग प्रभ ज्ञान, पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाइए मान।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए, सगल त्याग तरन आयो नानक लेहो मिलाए। कानड़ा महला पंजवा, पेख पेख बिगसाओ

हर हर हर मित कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासे रिद

नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहितार है रहाओ। कवन कवन कवन

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो बुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत। ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोहनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, होरे काज बुरो कै फेरो, रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कत्तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटकियो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

मेरे मन प्रीत चरण प्रभ प्रसन्न रसना हर हर पूजन तृप्तानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कलमल दोख सगल मल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन।

कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा पोकत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम देखत परमत लाख गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करुण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर शरण परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर

हा पूजा जे हर पावास माटी की ए पुत्री जोरी क्या ए कर्म कमास प्रभ बा पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे इक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु ने।

जगत उदाहरण नाम पे तेरे, नवनिद नाम निदान हर के रे, हर रंग रंग रंग अनूपे रे, काहे रे मन मोहे मगने रे, नैनो देख साध दरते रे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, असत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग व्यापै चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा।

तुम्हारे बलबले बलबले बल गई। पहले पे संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार अनिक दास कीरत करें तुम्हारी सोई मिलियो जो पाव तो जन नानक ठाकुर।

कनिक मंदर पाठ सेज सकी मोहि नाहि इन स्यों तात मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन पूम सैन।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सौ जन उदरे जिसे उदारो आप बिनस जाए।

मोही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्लभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार। कानड़ा महला पंजवा कर यारवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सहज सुभाए आपने आए कछु ना जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले पोले रहाओ। संजोग मिलाए साध संगाए कथु ना जाए करें बसाए गुण निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले। कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमित रूप अगम अगोचर रहो सर्व समाई रहाओ। कहन पवन नाही पायो पायो अनक उकत चतुराई जतन जतन अनक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई। कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मुक्त जुगत पुगत पूरन परमानंद परम निधान। तै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुरबान। कानड़ा मेला पंजवा करत करत चर्च।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, विख दुख कर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो, नानक पाने अपने ज्यों पावे तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो,

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मन लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग काष्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीठ लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

एक होए लख कोटी कोट से आवे गोराओ सैस फनी जपियो सेख ना गए हर जपतिया अंत ना पावे गो तू अथाओ अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गो जिन तू जपियो तेई जननी के हर जपतियो को

खरे खरोए बैठ तू उठत मार्ग पंथ ते आवेगो सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावेगो शासन सास

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैगल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे।

लोभ नगर में सबला गुरखिन में मार कडावे गो सत संतोख धर्म आन राखे हर नगरी।

सतगुरु महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावै गो। ज्यो गुरु उपदेश तरे प्रहलादा, गुरु सेवक पैज रखावै गो। सतगुरु बचन बचन है नीको, गुरु बचनी अमृत पावै गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुरु मुख बचन त्यावै गो। सतगुरु शरण शरण।

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिला।

गुरमुख नाद वेद है गुरमुख, गुर परचय नाम ध्यावे गो। हर हर रूप हर रूपो होवे, हर जन को पूज करावे गो। साकत नर सतगुरु।

लग संगत नाम त्यावे गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख समावे गो छक्का पहला।

रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये, हर त्याये बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज।

गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया जप ताप संजम हर हर निरंजन। गोविंद तन संग चाले बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रतन बांधो पाले मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परमा।

गोविंद गोविंद गुरुमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान, नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुरु तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लहो गया। श्लोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौ मैं ममता नाथ होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वर्तदा हर जेवड अवर ना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए। पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटिए हौ मैं चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म।

रंग परंग सिद्ध सब साजी, बहु बहु विध पांच उपावनी, सब तेरी जोत जोती विच वरते, गुरमति सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख पुख सब लै जावणी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उरधार, विच संगत हर प्रभु वरतदा, बुझो शब्द विचार। मन हर हर नाम से आया, दिखाऊ मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेत्यो, तिन जुए जन्म सब हार, गुरु तुखे हर

या चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विचकल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मल

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਦਿਆਲ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਹਮ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਹੋਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਭ ਆਸ

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बदभागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आद जुगाद वे सहर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा। सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर

को सदा सदा जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया, तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमति तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया, गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे, नर नर हरे, नर नर हरे, हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा, राम नाम रम रव रहे, रम रामो राम रमीत, कट कट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत। हर निकट वसे जग जीवना, प्रगास कियो गुरमीत, हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत। जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जप्यो मन चीत। महला चौथा, हर प्रभ सज्जन लोड़ लो, पाग वसे वड पाग, गुर पूरे देखा लिया, नानक हर लिवलाग पौड़ी। तन तन सुहावी सफल करी।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक ना मेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरु बचन सभा गै लीता, दुख दालद सबो लह गया जानाओ गुरु हर दीता। सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो, जिन जगत उपाय सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग बजाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन ताम सगारवा जा देखा हर नैने, नानक सो प्रभ मैं मिले।

रामा राम राम मैं अंत न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर राया।

जन को कृपा करो मधुसूदन, हर देवो नाम जपाया मैं मूरख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा, गुर के पग सिमरो दिन राती मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस तसिया, हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन छो जलिया, जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया, कहा भया दैत करी बकीली सब कर कर चर परिया, जे ते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम से आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाओ, रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते, बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

छुटे नाम सियाए थई हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के दुखों में मैल लग थई बुरतार कृपा हर जल नावाए सब किल बिख पाप गथई जन के रिद अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंति अवसर आए बनत है तेरा खे नाम साथई जन तेरा जप गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन्नाथ जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुड थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ जाने और कोई निंद करे हर जन की।

तासो कोई अपरना साचे जाकी भगत मेरा प्रभु माने हर के चोज विधान देख जाने जो खोटा खरा इक निमक पछाने ताते जन को आनंद भया है रिद्ध शुद्ध मिले खोटे पछताने तुम हर दासे समरथ स्वामी इक मांगो तुझ पासो हर दाने जन नानक को हर कृपा कर दीजे सद बसे हृदय मोहे हर चराने।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीर हीर विदाइए। कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा सद नव तन मन रंगी शोभा रहाओ ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा भगत दान जस मंगी योग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी। कल्याण महला पंजवा कर दूजा।

मन रसक रसन नाम जपत तें पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत देते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहां करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाये, साधु चरण गहो, कल्याण महला पंजवा, प्राण पथ दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण।

मुक्त जुगत अनेक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभत दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो कल्याण महला चौथा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद रामा राम रामो।

ਜੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਊਤਮ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਲ ਦੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲ

सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवि जय, अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते ली जय, मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। जो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर न पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड तरम राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अतुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पुजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जाने जनना

मन तम अर्थ करो सब आ गए रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर नित चुन चुन पूज करी जय आत्म देव देव है आत्म रस लागे पूज करी जय विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल

नाम बिना नक से नर देखो तिन पस पस नाक वढ़ी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नाम है त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तप बेगल शरण परी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल विखो दहन हो खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहा मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत परसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुरपूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन सबल अत बिख्या।

जो सूरज किरण गवया सर्ब ठाई सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती जो चकवी देख सुरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी मुख का दे अमृत पी जय। सापत स्वान कहीं है बोलो भी दो दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत जित हर अस्ताड कभी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करी जय। जब लग साफ हुए मन अंतर साधु तूर कवि जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन तूर साधु की लोची जय। पवन पवन पवित्र हो है सब जय साधु चरण धरी जय। ताज लाज अहंकार सब तजिए मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे दिख दुबदा काड कडी जय। परम सुके बहु उबसुक कही है मिल साधु संग हरी जय। पाते बिलम पल टिल न की जय जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत सत कर माने इस आज्ञा पाठ करी जय। संतो सुनो सुनो जन भाई।

जय जेवद भाग होए अपनी का ता गुरमत नाम दृढ़ी जय सब माया मोह बिकम जग करिए सहजे हर रस पी जय माया माया के जो अधिकारी विच माया पचै पची जय अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार पार लग ली जय नानक राम रम रम रम रम राम ते गप की जय सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए राम नाम रले मिली जय छक्का पहला।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज प्रवासी विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए बिन नामे पत कब हो न होए अवर सियाण तो सगली पाज जय बख्शे तै पूरा पाज रहाओ नाओ तेरा पान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाहा नाओ तेरा अमृत दिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बांधी जमपुर जाए नारी बेरी कर बरदेस मन किया खुशिया की चैवेस जा सदे ता फिल ना पाए नानक कूड़ कूड़ो हो जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुर्ख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोए त्यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नास्त करनहार अपार रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू और पला सहसार जित तन नाम न उपजे से तन होए खुआर प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध तय उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कही है करिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े शर्मत पावे कोई रहाओ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा जे को एक करे चंग्याई मन चित बहुत बसावे एते गुण एतिया चंग्याईया देना पछो तावे तुद सलान तिन तन पले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई प्रभाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव ज्योत कन्नो बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई जा के आस नाही निराश नाही चित सुरख समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला कांका तया दर परवान दिख अमृत दोय समकर जान क्या कही है सर्वे रह समाए जो किछ वर्त है।

अकथ पर जाए, कफनी बदनी नानक जल जाए, प्रभाती महला पहला, अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन, अष्टक तीरथ संग गहे, गुरु उपदेश जवाहर मानक, सेवे सिख सो खोज लहै, गुरु समान तीरथ नहीं कोए, सर संतोष।

सतगुरु पाए पूरा नावण, पशु करे तो देव करे, रत्ता सच नाम तल ही अल, सो गुर परमल कही है, जाकी वास बनास पत कौर है, पास चरण लिव रही है, गुरमुख जी प्राण उपजे हैं, गुरमुख शिव कर जाई है, गुरमुख नानक सच समाई है, गुरमुख निज पद पाई है, प्रभासी मैला पहला, गुर कर सादी विद्या विचार है, पर कर पावे मान, आपा मध्य आप प्रगासिया, पाया अमृत नाम, करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै तै मांगो, देह अपना नाम, रहाओ, पंच तस्कर कामत राखे, चूका मन अभिमान, दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान, जत सत चावल दया कनक कर, प्राप्त पाती धान, दूध कर्म संतोष कियो कर, ऐसा मांगो दान, खिमा तीरज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत कर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहे, प्रभाती महला पहला, आवत किने आवाख्या, जावत क्यों राख्या जाए, जिस ते होवा सोई पर जाने,

अगर न करना जाए रहा। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी।

या निर्वाण जिससे हुआ सोई कर मान्या, नानक गिर ही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हों तिसके बल जाई। पाप पुन की सार न जाने फूला फिरे अजाई। बोलो सच नाम करतार सुन बहुर ना आवन।

जात जन्म ने पूछिए सब करले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटी है नानक छूट सुनाए। प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे तंदा, आशा आवे मनसा जाए पुरजी पानी किछ ना बसाए। जागस जीवन जागन हारा, सुख सागर अमृत भंडारा रहा, कहो ना बूझे अंग ना सूझे।

ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन साख्या पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रंगन हारा एनस जिया देख संभाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभ रांग कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विद जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्कर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुरु प्रसाद प्रभु पाया अति रस रंग चलू ले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रब रहा प्रभु सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

मानस विच्छेड़ दुख पाए, शब्द मिले से सूचा चारी, साची दरगह माने, हम दिन नाम रतन लिव लागे, जुग जुग साच समाने, सगले कर्म कर्म सुख संजम, जप तप तीरथ शब्द वसे, नानक सतगुरु मिले मिलाया, दुख पराशत काल नसे, करवाती महला पहला, संता की रेण साध जन संगत, हर की रत कर तारी, कहां करे बपुरा जन बरते, गुरुमुख हृदय मुरारी, जल जाओ जीवन नाम बिना, हर जप जाप जपो जप माली, गुरुमुख आवे साध मना, रहाओ, गुरु उपदेश साथ सुख जाको, क्या किस उपमा कही है, लाल जवेहर रत्न पदार्थ, खोजत गुरुमुख लही है, चीने ज्ञान त्यान तम साचो, एक शब्द लिवलावे, निरालंब निरहार नहीं केवल, निरपौता लीलावे, सायर सपत करे जल निर्मल, उल्टी नाम चरावे, बाहर जातो ठाक रहावे, गुरमुख से समावे, सो गिर ही सो दास उदासी, जिन गुरमुख आत पछानिया, नानक कहे अवर नहीं दूजा, सात शब्द मन मानिया, राज करवाती महला तीजा, चौपदे इको अंकार, सतगुर प्रसाद, गुरुमुख विरला कोई बूझे, सब दे रहा समाय, नाम रते सदा सुख पावे, साथ रहे लिवलाई, हर हर नाम जपो जन भाई, गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे, हम दिन हर रस रहा अघाई रहा, हम दिन पगत करो दिन राती, इस जुग का लाहा भाई, सवा जन निर्मल मैल न लागे, सच नाम सितलाई, सुख सिगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई, अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे, सदा हर सेवो भाई, आपे करता जिसनो देवे, तिस वसे मन आई, नानक नाम ते आए सदा तू, सतगुरु दिया दिखाई, करवाती महला तीजा, निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी, आपे ले हो मिलाई, तू बेअंत तेरा अंत ना पाया, सब दे दिहो बुझाई, हर जियो तुद विट्टों बल जाई, तन मन अर्पी तुद आगे राखो, सदा रहा शरणाई रहाओ, अपने पाने विच सदा रख स्वामी, हर नामो दे वड्याई, पूरे गुरते पाना जापे, हम दिन सहज समाई, तेरे पाने पगत जे तुद भावे, आपे बख्श मिलाई, तेरे पाने सदा सुख पाया, गुर तृष्णा अग्न बुझाई, जो तू करे सो होवे करते, अवर न करना जाई, नानक नावे जेवड अवर न दाता, पूरे गुर ते पाई, करवाती महला तीजा, गुरमुख हर साल आया जिन्ना, तीन साल आए हर जाता, विच्चों परम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता, हर जियो तू मेरा इक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही, गत मत तुझते होई, रहाओ, गुरमुख सालान से साध पाएन,

गुर कै शब्द कमल पर गासिया, सौम्य दुर्मत खोई, सब नामे एको सच वरते विरला बूझे कोई। गुरमति मन निर्मल होआ, अमृत तत्व खामे, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन माने, सद बलिहारी गुर अपने विटो, जित आत्म राम पछाने, मानस जन्म सतगुरु न सेविया, बिरथा जन्म गवाया, नजर करे ता सतगुरु मेले, सहजे सहज समाया, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे भाग से आया, प्रभाती महला तीजा, आते पांच बनाए बहुरंगी, शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया, कर कर वेखे करे कराए, सर्व जियानो रिजक दिया, कली काल में रवे आराम, कट कट पूर रहा प्रभ एको, गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा, गुप्ता नाम वर्ते विच पल जुग, कट कट हर पर पूर रहा, नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया, जो गुर शरणाई पग पया, इंद्री पंच पंचे वस आने, खिमा संतोष गुरमत पावे, सो तन तन हर जनवड पूरा, जो कह बैराग हर गुण गावे, गुरते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित धरे, कर आचार बहु संतोष संचय, जो किछ करे सो नरक परे, एको शब्द एको प्रभु वर्ते, सब एक स्ते उत्पत्तल है, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाए रले, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सालाए, पूरा पाग हो गए मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाए रहाओ, अमृत नाम को जन हर दे, कोट मदे कोई विरला ले, जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माए वसाए, दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, एथे ओथे एव आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा ननाए अपना भाणा, सोई तगत सुगड़ सुजाना, नानक तिसके सब कुर्बाना, प्रभाती महला चौथा विपास इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद, रसक रसक गुण गावे गुरमत, लिव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम रिद अंतर भायो, गुर मंत्र दियो हर कान रहाओ, आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम बखान, कित बिद क्यों पाये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर बान, सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे पाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक को गुर कृपा भारी, हर नाम दियो खिन गान, प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुर मुखर बोले, सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करें प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर गवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पद चारे हम बाल रहाओ, साकत को दिन रैन भारी, मोय फाते माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बादे बहु विदबाल, सत्संगत मिल मत बुद पाई, हौ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर की ये शब्द निहाल, हम बारिक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल,
दिख पौ जल डुबदे काढ लियो प्रभ, गुरु नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक दिन हर प्रभ कृपा धारी, गुण गाए रस प्रतीक, गावत सुनत बहु कहे मुक्ते, जिना गुरमुख खिन हर पीक। मेरे मन हर हर राम नाम रसतीक, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस जीक। रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिना मस्तक उजल टीक। हर जन शोभा सब जग ऊपर, ज्यो विच उडवा सस पीक। जिन हर हृदय नाम नवस्यो, तिन सब कारज फीक। जैसे सिगार करे दे मानुख, नाम बिना नकटे नकीक। कट कट गुनैया रमत राम राए, सब वर्ते सब मैं एक। जन नानक को हर कृपा धारी, गुरु बचन ते आयो करी नीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभधारी, मुख हर हर नाम हम कहे। पतित पावन हर नाम ध्यायो, सब किल बिख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, पाया नगर नगर हर बसयो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगत्यो। कर मंदल हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उद्याने, ते साकत मूड मुहे। जो मृग नाभि बसे बास बसना, त्रम त्रम्यो चार गहे। तुम वड अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रभ लहे। जन नानक को गुर हाथ सिर करयो, हर राम नाम रव रहे। प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम हर, हर जप्यो हर प्रभ वडपा। सतगुरु बचन सुखाने हीरे, हर तारी हर प्रभ कृपा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुर पूरे। हर नामा मन तन बसा रहाओ, काया नगर वस्यो कर मंदर। जप शोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पै सुहेले। मुख उजल गुरमुख तरफा, अनपौ हर हर हर लिव लागी। हर उर्धार्यो गुर निमखफा, कोट कोट के दोष सब जन के, हर दूर किए इक पलफा। तुमरे जन तुम ही ते जाने, तब जान्यो जन से मुखफा। हर हर आप करयो हर जन में, जन नानक हर प्रभ इकफा। प्रभाती महला चौथा। गुर सत गुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जपबा। तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा, दिख दुख दे बाह दे कडबा। जप मन राम नाम हर भांबा, उपजंप उपाय ना पाये कतहु। गुर पूरे हर प्रभ लाबा रहाओ, राम नाम रस राम रसायन। रस पिया गुरमत रसदा, लो मनूर कंचन मिल संगत। हर उर्धार्यो गुर हरवा, हौ मैं बिखिया नित लोग लुवाने। उत्कलत मोह लुबा, तिन पग संत ना सेवे कबहू। ते मनमुख पूंगर परदा, तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो। हम करे हार तुम शरणवा, ज्यो जानो त्यो राखो स्वामी। जन नानक दास तुम नवा। सत्ता पहला प्रभाती, विपास पड़ताल महला चौथा। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। जप मन हर हर नाम निधान, हर दरगे पावे मान। जिन जपिया ते पार प्राण रहाओ, सुन मन हर हर नाम कर ध्यान। सुन मन हर कीरत अठ अठ न जान,
सुन मन गुरुमुख तावे मान, जप मन परमेश्वर प्रधान, छिन खोवे पाप कुटान, मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवा विपास इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रच जोत निवाजिया, सेजा तरत बर्तन को पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते, हरख सोगते रहे निरारा, ता तू पावे प्राण पते रहा। कातड़ पोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटंग सगल बनाए, रिजक समाहे जल थल नीत, सोहर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोई न होवे, कोट अपराध इक खिन में धोवे, बात करे नहीं पछोतावे, एका बक्स फिर बहुर ना बुलावे। किरत संजोगी पाया भाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुरमिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मुरार। करवाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन के पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार। तुमरी पगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छुड़ाई रहा, जो जन राता प्रभ के रंग,

देख देख मन में हैरान है, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा कै हृदय वसिया प्रभ सोए, सोई नेचर आवे न जाए, हम दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूरन निरंकार, कर कृपा मोय ठाकुर देवा, नानक उदरे जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, हाथ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कलमल जाहे, इस गुर की हम चरनी।

कलेश जो तिस पावे सो फल होस तिस गुर को हो सब बल जाई जिस प्रसाद हर नाम दियाई ऐसा गुर पाये वडवागी जिस मिलते राम लिवलागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल गटा के अंतर जामी आठ पैर अपनी लिवलाए जन नानक प्रभु।

प्रभाती महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ सुगुण सुजान गुरपुरा पाये वडबागी दर्शन को जाये कुर्बान रहाओ किलगुट में तो शब्द संतोख नाम आराधन हो आजोग साध संग हो आप्रगास चरण कमल मन माये निवास जिनकी आकिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ जिसे निवाजे कृपा धार पूरन कर्म ताके आचार गुण गावे नित नित नित नवे लख चौरासी जोन न भवे इहा उहा चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल तल मैयल पेखे पर पूर नानक उदरस तिस जन की दूर प्रभाती मैला पंजवा कुर्बान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने।

नानक बालक कछु न जाने, राखन को प्रभु माई बाप, प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक रहाओ। प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक, नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक, संत रेण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप।

सुत कंचन स्यों हेत बदाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान तेरा अंत न पाया, साथ शब्द तुझ माए समा।

सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संयम हमे मार, जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख ने तहारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रवाची महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजी गर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन सोई, तू गुण सागर अवगुण मोही रहाओ, माया तंदा तावनी, दुर्मत्कार विकार,

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज व्यास पराया तिनका जग अठारे काए कीर्तना चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाई जो किस वर्ते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंकर झूठा क्यों सुच होए, सब जीतो वह विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाक रहावे।

समाए एक सरकार से सतगुरु दिए मुक्त आना हर पद चीन पहे परदाना मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई प्रभ निवाजे किन कीमत पाई कहो नानक गुरु बूझ बुझाई नाम बिना गत किने न पाई प्रभाती महला पहला एक तो

बिन सत बार ना लागे काई रहाओ। मन मुख को दुख दर्द भी आपस मन मुख दुख ना जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल ले शरणाई। मन मुख ते अब पगत ना होवस हो मैं पचे दीवाने, इह मनु आखिन ऊप प्याली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग पया तृप्त नहीं बिन सतगुर पाए, सहज सहज मिले सुख पाए दरगह पैदा जाए। दरगह दाना बिना एक आपे निर्मल गुर की बाणी, आपे सुरता सच विचारस आपे बूझे पद निर्माणी। जल तरंग अग्नि पवने फूल

परख खजाने पाया, जात वर्ण से सह अतीता, ममता लोभ चुकाया, नाम रते तीर्थ से निर्मल, दुखों में मैल चुकाया, नानक तुम के चरण पखाले

सात रतें सुर उभरे दुखिये दूजे भाए हर मंदिर में नाम निदान है ना बूजे मुग्ध गवार गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया उधार गुर की बाणी गुरते जाती जे शब्द रते रंग लाए पवित्र पावन सुजन निर्मल हर के नाम समाए हर मंदिर

हर मंगल में मन लोहत है मोया दूजे भाई पारस पे कंचन भया कीमत कहीं ना जाए हर मंगल में हर वसे सर्व निरंतर सोए नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए प्रभाती महला की जा कह पाए जागे से जन जागरण करें हों में मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें पंच तस्कर का डे मार मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाए मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुम उपजे दुखों में विच्चों जाए हर नामा हर मन वसे सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने हर राख्या उर्धार ऐसे ओथे सुख गणा जप हर हर उतरे पार।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पन्यवा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज

बनता छोड़ बद नजर पर नारी, वेश ना पाये महा दुखियारी, बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी, अंते रहता दुख देही सहता, हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पूछो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, जो बालू कर खौरना ठाई, जिसनो पै गोविंद दयाला, गुर का बचन तिन बांधियो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नानक तिन कै संग तराया, जे होवे पाग का दर्शन।

जन्म जन्म का टूटा गांडा जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहा लिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई। जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न तय गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करी जा, चरण कमल निम्ख हृदय धारे, गोविंद जपते सब

भरपूर मात पिता हर प्रीतम नेरा मीठा जन भरवासा तेरा कर गय लीने अपने दास जप जीवे नानक गुणतास विपास प्रभा की बाणी भगत कबीर जी की।

आलक्षना लखिया जाई रहा। तत तेल नाम किया बाकी दीपक देव जियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काशी अवगत बाणी नामा कहे जग जीवन पाया हृदय अलस बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रहा रव ऐसा रूप बसानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे अमद रूपी मेरो रामैया राव बावन भीखू बाने भीखे

करवासी अकुल पुरख इक चलत उपाया कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया जी की जोत न जाने कोई तैने किया सो मालूम होई राव जो परगा से आमाटी कुंभे हो आप ही करता भी तुल दे हो जी का बंधन कर्म भी आपे जो किस किया सो आपे आपे प्रणवत नाम दियो इहो जियो चित्वे सो लहे अमर होए सब आकुल रहे।

हृद अंतर पर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निस्वादं रहाओ। नित प्रत स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं। हृदय चुरी संध्यानी, पर दर्द हिरन की बानी। सिल पूजस चक्र गणेशं, निस्जागस पगत परवेशं। पग नाचस चित्त अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला। हृदय कूर कंठ रुद्राथं, रे लंपट कृष्ण अवाखं। जिन आत्म तत् न चीनिया, सब फोकट धर्म अवीनिया। कहो बेणी गुरुमुख त्यावे, बिन सतगुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत नह क्यों गवार, बिनसत नह लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

अवसर भी हाथ है जय जावंती मेला नामा। रे मन कौन गत हुए है तेरी, ए जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान।

तत आसन नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रचति चर्मणे नवंत द्वारं भीतरहंतं।

प्राप्तम धर्म लखन नानक जैसो परसन माधवे मृत मोहं अलप बुद्धन रचंत बनता विनोद साहन जो बन बे कर्म कनक कुंडले बचित्र मंदर शोभंत वस्त्र।

धरे। दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी प्रत पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् भं अहम् बंधं।

होत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडन ऋद बसंत बैधीत दूते कर्म करत महानिर्मले जनमे मरण रहंत स्रोता सुख समो अम

अधरं धरं धारणे निर्धनं धन नाम नरहरे अनाथ नाथे गोविंदे बलहीन बल के सवे।

बते विपरीत बुद्धन मारत लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते।

शुद्ध दया निधान निगमन, नच गुण गय नाम कीर्तन, नच राग रतन कंठन, नह चंचल चतुर चातुर भाग उद्दम।

अजाभोदंत कंद मूलं बसंते समीप के हरे तत्र गते संसारे नानक सोग हर्षं व्यापते छलं छिद्रं कोट विघ्नं।

ਡਾਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹਿਤ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰ।

परम बादम अवर्ते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतन बलवंत बलात् कारणे चरण कमल भजंत तृण समान धृग जन मने।

करे न चित्तो, जाचा अस्थल तोल अमितो, सोई नानक सखा जी संग के तो। अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए।

مٹھ کٹت انوپ مرم نہ جانی ہے گاہک دنی اپار سو تت پٹھانی ہے چتے چت

होए। कबीर डूबा था पै उबरियो गुल की लहर चबक जब देखो।

काल पाछे कछु न होए बा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

कीचड़ आटा गिर परया किछु न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ। कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे।

कबीर राम रतन मुख को श्री पारख आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब संदेही ने मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन जंजा

जीवन पे पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल पलंग। कबीर साधु संग पर आपकी लिखिया होए लिलाते, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि करी।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए कबीर जो तुम खाद तिरम की ताके से की खेले काठी सरसों तेल के ना फल पई ना तेल सूंदत डोल है अंगगत अर चीनत ना ही संत कहनामा क्यों पाये बिन भगतों भगवंत।

खल डूंगर पवे होम अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम राती वड्डियां तुक उठन पास सिज दिना दा जीरिया दिना विदानी आस करीदा जे मैं होंदा वारिया नित्ता आयड़िया।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हूँ लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

सोताओ वत कुआरी ना किए कलरे केरी छपड़ी आए उलते हांजे सिंजू बोरन ना पीवे उड़न संधी डंजे हंस उदर कोदरे पया लोक विदारण जाए जहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चल सी थके कवले कल फरीदा इत सिराने पोए सन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग वापरे इकट पया पास फरीदा पन्नी करी सवनवी टुटी नागर लाजे अजराइल फिरिस्ता कै कर नाची अज फरीदा पन्नी करी सवनवी टूटी नागर लाजे जो सज्जन को

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई नाही। फरीदा जे दिह नाला कपया जे गल कपे दुख पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेरे मिट्टी पाके जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

नौबत वजी सुबह सियों चलन का परसाद फरीदा रात पूरी वंडी है सुतियां मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाए जग ऊंचे चढ़के देखिया कर कर एहा अग महला पंजवा फरीदा सोम रंगावली मंज विसूला बाग जो जन पीर निवाजिया तिना अंत न लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पायन जिना प्यारे ने कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे तार रब रजाए वैन सिदाओ गौ करे फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर रात लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे बेड़े नो कप

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अग्गे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तैं रब विसारिया ता रब ना विसरियो ए महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा ने मुमताज

दिल से लाए विकार अल्लाह पावे सो फला दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजै ना।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हैं कितना सुतियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को तो तन काई कोरे जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो।

सिर तल उत्तर पाओ। मैं जानिया वधंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जे किस पाव

तो कमस को अखर कहाँ गुण कमस को मणिया मंत्र कमस को वे सोहा करी जित वस आवे संत निहंस को अखर खान गुण जो बा मणिया मंत्र।

पार नहीं तुम भरे, हर अंत नहीं पारावार, कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार, एक दिन क्या बखाने, हाके बल बल बल बल सद बल हार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर, परे ही ते परे अपर अपार पर, आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर, उप तो कर लो एक निमक तो भर, आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट कर छते, जाए नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसयो, से जन्म मरण दूं ते रहो। सत सत हर सत सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरखे, पुरातन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तें प्यार, हर गुरु नानक जिन परसयो, तिन सब कुल कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे पै धरयो, सचे तख्त निवास सच तथावस करयो। सच सुन जो सन

हर तारन तरम समरथ सवैद कुल समूह उदाहरण सो चित चेत अचेत जान सत संगते धर्म अंधेर मोय कत धो मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भाव सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरो रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सोधे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट

मन के काट भरम भरे रे मनमूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना संपत धौल धूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना सुत बन का साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंसत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नाम के जगे जानत सुपना देहे नने ननीता माया मत कहालो मादारो देहे न गेहे नने ननीता माया मत कहा लोगारो पत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जातिर दे न विचारो रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा

मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपद नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो। प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले तारी। साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी। धावन पावन पूर कमावन एहद करत फौज तन जारी। करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी। पस पंखी बिरख अचावर बहुत जौन भम्यो अत भारी। छिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे। इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत। सिद्ध मांस

तन धन मृत मरो है, अंत जोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के, कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी, औषध मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद

सदा सदा बलहारी। आवत कत्यो न जात प्रेम रस चरण कमल सन, दामन बंधयो न जात विधे मन दर्श मग, पावत जरो न जात रहो जन धूर लग, नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे, नानक रोग दुख अगमो छिदे हर नाम खग, उदम कर लागे बहु भांति बिचरे अन शास्त्र बहु खटुआ, भस्म लगाए तीरथ बहु घमते सूखम दे बंधे बहु।

गुण मर्म चार खट दर्शन ब्रह्मागत समरंथ गुणाम गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत लेवल।

भगत दीन गुण रही सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आर न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिथ जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तै धरयो मस्तक हथे सहज अम्यो उठो सज।

जाकु दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे। ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरी भूत सजीव परम प्यारे कौ तीरथ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर समुरारे तै तोड़ियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जाने अकलगत गुरु परवानी जाके दृश्य अकल ठानी बिमल बुद्ध सुठानी पैर शील सन।

लैणा जगत गुरु पर समुरार। दृष्ट भरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचक प्रतपालन। आत्मरत संग्रहण कहन अब

गरल नाथ तन नथे अम्यो अंतर्गत पियो रुद बिगास जागयो अलग तल धरी जुगंतल सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम सा

बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट हो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुर सबर सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कलम खाने दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे।

चीजों को एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सोए पुरुष वरसाचा जाता एक नाम असल संसार जिन भगत भव

सोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुझसे ध्याई जतन कपी सर।

सतनाम गुरु गंभीर गुरु मत सत कर संगत दरिया सोई नाम अचल भगत भाव तारण अमरदास गुरु को पुरिया नाम कित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर बुछे दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगतवत भव जल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम धुआवे देव कैतीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधेव हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार सोई नाम पदार्थ अमर गुरु तुस दियो करतार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा सहित बैकुंठ बीना परचे संत प्यार जय कर तारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुरु की को जोग नाम नामन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी धन सतगुरु सेवे जिस पसाय

हृदय बसो अति हो सोए रस्य नहीं जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान।

चरण तपर सत्यत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सत्यत हथ लगे गुर अमर के जी तपर सत्यत जी गुर अमर भरजे

सरवणी गुर अमर सुन जाए सत्यत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालप भणी जो सुर ने गुर अमर निते।

गुरु अमरदास परसिए ध्यान लये पौम कै। गुरु अमरदास परसिए अभो लभे गुरु तुकै। एक बंधु गण जो को रहे जासमंत मानो लहे। जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिखे मिले। सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद ने।

जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो। बोल तो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे, गुरु अमरदास कीरत कहे त्राहे त्राहे तो पाशरण। आप नारायण कलाधार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जैसे जैसे भरपूर सबक दीपक।

जप तप सत संतोख तिक दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे कर तारे गुरु गोहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरे गुण कर तारे उचरे गुरु अमरदास।

धर्म भन कर गयो भगत सिंह सर लड़यो धन बोहर अटल मन सबक गुरु ने जाग दियो काम क्रोध लोभ मोह अपत

सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे।

दे एक मन पुरख ने अंगन ध्याओ गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ गुण गावत मन होए दिगासा सतगुर पूर जने की आशा सतगुर सेव परम पद पायो अदना से अवगत दयायो किस भेटे दारिद्र न चमते कल सहारता।

छूटत प्रवाह में अमरा तट अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अनभय पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण शकुन हरदास तने गुरु रामदास सर अवर भरे। सतगुरु मत गुड़।

निरंजन खरे लहा। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तने, गुरु राम दास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागे, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाय भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा के

अबर भर उपायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर भाए तीम रस आते जाने सतगुरु कहते।

अमृत रस प्रकाशय निमित शांत उपदय दुर्ख दुरंतर नाशय सुख सागर।

भरत परवासे तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता संग

सतगुरु नाम एक निव मन जप दृष्ट जन दुख पाप पौखत हो जियो तारण करण छिन मात्र जाको दृष्ट धारे।

जा को दुखद दरिद्र जाए, नाम सो निधान पाए, गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, दृतन जन दुख पाप को।

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जास सिमरत अंतरे जाके दे।

पांव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकड़ खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे, गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे। गुर नैन भैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै, जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में। गुरु गुर गुर कर मन मेरे, तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे। सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त तैने रे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाए परे रे। जो हर बुध हृद सिद्ध चाहती, गुरु गुरे गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास प्यो सेवन की, बंसत सिद्ध को विद मिलायो। पूरन भवन ठौर बसोरसे, बासन सुजो दंश धायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी, समजलन तीर विवास बनायो। गयो दुख दूर।

निसबा सुन एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास तो आस जगत गुरु की पारस भेंट परस करो रामदास गुरु हर

जग तजो भजो हर ज्ञानियों। वचन गुरु हृद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियों। जो तो सब सुख इत

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये सुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

कृपा सतयुग जिन धूपल श्री प्रहलाद भगत उदयं हाथ कमल माथे पर धरियं अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध।

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

जग जन्म मरण भगाए आई ही ये परतीत, परतीत ही ये आई जिन जन के

अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, देव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया

दान करें, पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरनन। सतगुरु गुरु सेव अलख

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

धर्म अंग अलख अगम खेल किया आपने उठाए लियो। अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रया समाए, सुते सिद्ध रूप धर्यो साहन के साहरियों।

सच जान मंत्र एह नित बातुर कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसार धो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गे ते सने चित बिलास जगत एओ चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही धार तजनिकार मन

कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे तय अगनत इनको मोह भया मन मद का 84 लख जौन

आपे हस्ते आप ही चितवे आपे पंच सूर पर गाता आपे जल आपे थल खम्मल आपे किया घट घट बासा आपे नर आपे कुन नारी आपे सार आप ही पाता गुरमुख संगत सबे विचारो वाओ वाओ का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहा अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मा।

गुर समरथ गए किरिया धूप बुद्ध समत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है धर्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उधार।

रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विद रतनागर, संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख कागर।

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहते ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन गहना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ देख किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

अंतर जगत तेज कुम लोक प्रजा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल्प मोजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर

पायो सतगुरु नानक भगत करे एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रचहियो गुरु अमरदास।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा खूब भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारस बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जैसे तुग सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभु पाइए तो सतगुण सिमरो नरो। जिन

ज्ञान प्रगत पुजारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कब कीरत जो संत चरण मुन लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग ना

जै तिखत अत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु कीनी भगत प्रेम लिवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद।

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जतवार।

गुर अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बलधागी उन मानियो

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहो मथुरा अमृत बैं मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे तेज भूमंडल छायो पारसे परसे परस परस

बौरस साल ने सवार दी खट बस मीठे पाए त्यों बाणी पगत सलां दे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए तै पगती पगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभु ये परवाह है कित खादे तित पाए सतगुर के पाने जो चले तित पासे हर गुण गाए तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार तिग तिना का जीविया कित आए संसार गुरमति पौ मन पवे ता हर रस लगे।

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे बिन नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर कह शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवा।

जम्मन मरण न चुकई रंग लग्गा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए, जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए, नानक भक्ति रत्या हर हर नाम समाए, मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह।

पुत कलत मोहित है अंत बेली को न सिखाए, सतगुरु सेवे सो सुख पाए, नाम वसै मन आए, नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नामे दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए, नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए। मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास, ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करें विश्वास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा।

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया, बिख हो मैं गया बिलाए, गुरमुखा के मुख उजले हर दरगे शोभा पाए, जन नानक सदा कुर्बान तिन जो चाले सतगुरु भाए, सतगुरु पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए, निर्वैर है नाल वैर रचाएदा अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नाम है जम पुर जाए, नानक बिन नाम है।

सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार, एथे ओथे मनियन हर नाम लगे वापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नामे ठवर न ठाओ गुरमती नाव मन वसे सहजे सह समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगे तूर तिन हो सतगुरु बाणे जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नाम ती वार बिन हर शांत ना आवई किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझिया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श ले हो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम से आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण नहीं चल भये गुरमुख नाम से आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम ना चेत्यो तिग जीवन तिगवास जिसदा जित्ता खाना पहनना सो मन ना वस्यो गुणतास ए मन शब्द ना पेदियो क्यों होवे करवास मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास हर हर नाम उरधारिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिजै बिन शब्द मुक्त न होई पेख करे बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए वसे गुर शब्द विचार है कोई नानक शब्द मरे।

आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नरक पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा ऊपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहस्यान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह सब सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन।

नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुरु पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून न आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दया नो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोहने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमती हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव निज नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दे दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार। माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार। जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान। किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान। हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ। एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ। पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए। सतगुर विच वडिया वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए। संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ। तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ। से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदिन सेवन गुर अपना अंदिन अनदरहन। नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाईए मन मुख भूले जाए। बाबी हा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दूर।

बोलिया तेरा थाए पवै गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिख उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवै सह चवाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागनी सच्चे नाम समाए तुरु खसम पेजिया सच्चे हुक्म पठाए इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जां तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे धरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पै का सह सिंगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली धरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास नानक कट कट एको वरतदा शब्द करे प्रगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लिये किस नाव लिये परमेश्वर पन्नन करण समरथ हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान आप छोड़े ता सो मिले सच्चा यो विचार होमे फिक्का बोलना बुझ न सका कार वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईंदा अम दिन सदा विहान बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार नदर करे जी आपनी ता आपे लह सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना मैले वेश नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कह उपदेश चारे कुंडा जे पवे बेद पढ़े जुग चार नानक साचा पेटे हर मन वसे पावे मोग द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित जमन मरण का मूल कटिए ता सुख होवी मित पुलिया आप समझाए थी।

पहलवान सुकड़े असंख माया चूकी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तिसना पेख भुलने बुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच आराध्या नानक मंतन पब पतित उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका।

जगत पिखारी फिर तू है, सबको दाता राम। जगत पिखारी

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो। केहे वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै कर ही पंच रागनी संग उचर ही प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दिशा सुनावे।

मालरा कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंचना।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत समोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघवे गावे पांचों संग बिरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गबरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राघसो पांचों थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राघवे गावे पांचों संग बिरंगन।

सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाणी के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाई कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तत् धवल आकाश।

पछताए। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुहि चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाए।

आओ। कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ

असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर का जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार, जो तुझ भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे।

कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति माह कवण जित होवा आकार वेर न पाया पंडती

कोई जान करता सिर ठीक कौ साजी आपे जाने सोई किव कर आखां किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आख।

तिस ऊचे कौ जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए। वड्डा दाता तिल ना कमाए, केते मंगह जोद अपार, केतियां गणत नहीं विचार।

के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल वपार मूल वपारिये।

देवतियां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पन्न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाली गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा।

तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश दिशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दो एकार चलावह लेखे आ

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी।

जोर जोर लागी मन मरन नह जोर जोर ना राज माल मन शोर जोर ना सुती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया परपूर।

राजा धर्म दुआरे गावन तुद नो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुद नो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुद नो इंद्र इंद्रासन बैठी देव

कामन तुदनो पंडित पढ़नर कीसर जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहा पत साहिब नानक रहन रजा।

मान सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, ऊडे ऊड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जा लोई आसा महला चौथा तू

सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह दुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जती सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा।

तहाऊ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हो मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभे दुख पावे है जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम।

नाव सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाव मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाव सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाव श्री राग महला पहला।

कै घट नाम नवास जित बोलिया पत पाई सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिनका क्या सा लाहना।

जित सेवियां सुख पाईए तेरी दरगाह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहार जाऊ ता मन खीवा जानिए जा महली पाए थाऊ नाऊ नीर चंगियाईया सत परमल तनवा।

तिसमिन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्लां सब कूड़ियां तुद भावै परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर।

करमंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नानक सच्चा पातशाह

रहाउ पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार जा पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर जिनको सतगुरु था।

हारी है, डर गया क्या हुई। श्री राग महला पहला, गुणवंती गुण वीथर, अवगुणवंती चूर, जे लोड़ है वर कामणी, नह मिली है फिर कूर, ना बेड़ी ना फुलहड़ा, ना पाई है फिर दूर, मेरे ठाकुर पूरा तख्त अडोल, गुरमुख पूरा जे करे, पाई है साच अतोल, रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना, तिस मेहमान कलाल, मोती हीरा निर्मला, कंचन कोटरी साल, बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुलहा हर नाम, गुर सर सागर बोहितो, गुर तीरथ दरियाओ, जे तिस भावे उजली, सत सर नामन जाओ, पूरो पूरो आखिए, पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण, पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले, क्यों घाटे गुणतास, श्री राग महला पहला, आव भैणी गल मिले, अंक सहेलड़िया, मिलके करह कहानियां, समरथ कंत किया, साचे साहिब सब गुण, अवगण सब असहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बीचारिये, जां तू तां क्या होर रहाओ, जाए पुछो सुहागणी।

आखण आखी है, आखण तोट ना होए, मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए, जिसके जी प्राण है मन बसे सुख होए।

जाए। जो तिस भाणा सो थीए अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहिए सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास, श्री राग महल पहला धात मिले फुन धात को, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखियां हर जप एक पाए। भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन। रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, त्रिविध कर्म कमाई है आस अंदेसा होए। क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले है सुख होए। निज कार महल पछाणिए नदर करे मल धोए, बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिए अवर त्यागे आस, नानक देख दिखाइए हौं सत बलिहार।

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौनिध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

न पावे ता सब अडंबर कूड, सब रस भोगण बाद है, सब शिंगार विकार, जब लग शब्द ना भेदी है, क्यों सो है गुरुद्वार, नानक धन सुहागणी।

आगे पाचमोए अंतर तृष्णा याग गुर राखे से उबरे और मुठी तंदे ठग मुई प्रीत प्यार गया।

चाहे गुरमुख नाम सलाही है, हौ मैं निवरी पाहे रहाउ। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली, हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा, गुरमुख कीमत सार। लख सियान पजे करी, लख सियो प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया, बिन नावै दूख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है, गुरमुख चीनै आप। तन मन गुर पह वेचिया, मन दिया सिर नाल। त्रे भवन खोज टंडो लिया, गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मलाया, नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू

ठहराव रहे शिव शक्ति का मेल। त्रेहो गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल। बेजोगी दुख विचड़े मन मुख लह ना मेल। मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए। ज्ञान महारस भोग वै बहुड़ भूख ना होए। नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुभान।

रात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐसै धंध पटाई है सच लिखत परवान।

गए नाही सहसा सोग। गुरमुख जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग। काया कामन जे करी भोगे भोगण हार। इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार। गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए। अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए। नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया। गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाई।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास ज्यो अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई इं भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न पा

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाहा पात परवान नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वण जा रिहो वखर लिहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर

सुख होय, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होय, ठाही पाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोय, खोटे पोते ना पवह तिन हर गुर दर्स ना होय, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोय, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोय, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जो

साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

पुरुष किरखा करे इन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीन कह नानक इव एक तारे गिरिराग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच।

शैतान मत कट जाई, नानक आखै राहे पै चलना, माल धन कित कु संजियाही। श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसारू, आब खाक जिन बंद रहाई।

तू ओ नाका तेरे ओहे असी बोल वगाड़ वगाड़ बोल तू नदरी अंदर तोलह तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजहो घटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पुछ।

आस सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरियां भोग करहै नव खंड राज कमाहे बिन सत गुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछै रिद सिद्ध फिरै ओना तिल ना कमाए।

कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिस कै सच वसै सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़ है तिन निज घर वासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला

पारस परसी है पारस हुई ज्योति ज्योत सुमाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई मन पुखा पुखा मत कर है मत तू कर है पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

से निर्मले हों सद बलिहारे जास हृदय जिन कह हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिन को लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर।

समाय तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु पाई कुल उधार है अपना धन जणेंदी माय हर हर नाम त्याई है जिसनो कृपा करे रजाय जिन्नी गुरमुख नाम त्याया विचो हो आप गवाय ओ अंदर हो बाहर हो निर्मले

आनंदिन नाम त्याय रहाउ साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय गुरमुख शब्द पछाणिय हर अमृत नाम समाय गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय मनमुख मैले मल परी हऊ।

नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

आई, लाहा हर हर नाम मिले, सहजी नाम समाई, बिन गुर महल ना पाईए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहू, जिद्दू पाईए सच सोए, असुर संगारे सुख वसे, जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया, तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही, पाओ लाए जन कोए, नानक एक ज्योत दोए मूर्ति, शब्द मलावा होए, श्री राग महला तीजा, अमृत छोड़ बिख्या लोवाणी, सेवा करह विडाणी, अपना धर्म गवावह बूझह नाही, अन दिन दुख विहानी, मन मुख अंध ना चेत ही, डूब मोए बिन पानी, मन रे सदा भजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे, ता हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हूं मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना, मन मुख पत

ताप पवित शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई सहजे सच समाऊं नानक नदरी पाईऐ गुरमुख मेल मलाऊं श्री राग महला तीजा मनमुख कर्म कमावणी ज्यों दुहागण तन शिंगार सीजै कंत ना आवई नित नित होए खुआर पिरका महल ना पावई ना दिसै घर बार भाई रे इक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहै जप राम नाम सुख पाए रहाउ गुरमुख सदा सुहागणी पिर राखिया उर धार मिठा बोलह निव चलह सेजै रवै पतार सोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार पूरै भाग सतगुर मिलै जा भागै का उदौ होए अंतर हो दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए गुर कै भाणै जो चलै दुख ना पावै कोई गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावै कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया हों मैं विचों खोए नानक गुरमुख नाम त्याई है सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा फिर जाने अपना तन मन अगै धरी

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोए रहाउ।

कराए देख कुटंब मोहे लवाना चलदियां नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वरतदा।

द्वार गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार एहु मनुआ आत सबल है छड़ी ना किते उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती देश जाय नानक नाम लगे से उभरे

मन तन सीतल साच सियो सास ना बिरथा कोई मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत।

अगली मनुआ रज्जा सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहिया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहिया समाय वाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हूं मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाई अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाए जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेत्या तिन आए बिन नामे सब डुमणी दूजे पाए खवाए तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पलाना अंदोला फिर आवे जाए नदर करे।

मामदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेख नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हउ मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा

मिन प्रीतम दुख कटिया शब्द मलावा होय सच खटना सच रास है सच्ची सच्ची सोय सच मिले से ना बिछड़ है नानक गुरमुख होय श्री राग महला तीजा आपे कारण करता करी श्रेष्ठ देखै आप उपाय सब एको एक वर्तदा अलख ना लखिया जाय आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाय गुरमति सद मन वसिया सच रहे लिवलाय मन मेरे गुर की मन लहर जाय मन तन शीतल सब थी नाम वसै मन आय रहाउ जिन कर कारण धारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणी है जाय आपे नजर करे ते जन शब्दे सोहणे तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रत्ते आप मेले करतार गुरमति सच सलाहना जिस दा अंत ना पारावार घट घट।

भाई अन दिन रावह फिर अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वार पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सालाह ने अपना तिनकै हों सद बल।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग होमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल होमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी तो होए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाए मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआए गुर प्रसादी मन वसे मल हऊ मैं जाए समाए ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हम तिस बलिहार जाऊं ए मन

नानक नाम ना विसरै सच्ची माही समां। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला। क्यों प्रीतम मिलै घर आए, जा देखा प्रभ अपना। प्रभ देखियै दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना। प्रभ कित बिद मिलै मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोय। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोय। रहाउ सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावै सोय। सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जीवड अवर ना कोय। हौ गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोय। मन हठ किनै ना पाया, कर अपाव थके सब कोय। सहस सियाणप कर रहे, मन पूरे रंग ना होय। कूड़ कपट किनै ना पायो।

थीयै मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ। नाम अमूलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगिया कड रतन देवै परगास। धन वड भागी वड भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटो से भागहीन वस काल। ओए फिर जोन पुआई है विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस न पीती है जिने अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यों आऊ सतगुर कै बल जाऊ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटि कर्म कमाओ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बोहत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊ जिन्नी मेरा प्यारा रावया।

साधु संग मसकते टूठे पावा देव सब किस वसगत साहिब आपे करन करेव सतगुर कै बलिहार ने मनसा सब पूरेव इको दिसै सज्जनो इको भाई मीत इक सह दी सामगरी इक सह दी है रीत इकस स्यो मन मानिया ता हुआ निहचल चीत सच खाना सच पहनना।

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देव प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा

मात पिता इकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान तनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप, इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए, गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन कीआं इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाहु कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव हर जपिय आराधिय आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़े सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवै शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा, कूड़े सबे साक। गिन कीता तिसह न जानी, मन मुख पास न पाक। अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर। भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार, जी जंत कर दया। बिन प्रभ कोई ना रखनहार, महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरऊं, कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा, मेरा तन अर धन, मेरा राज रूप मैं देस। सुत दारा बनता अनेक, बहुत रंग अरवीस। हर नाम हृदय ना वसई, कार्य कितै ना लेख। मेरे मन हर हर नाम त्याए, कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ। नाम निदान त्याई है, मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है, गुर की चरणी लाग। हों मैं रोग भ्रम कटी है, ना आवे ना जाग। कर संगत तू साधकी, अठ सठ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरि, साचा इहो सुआउ। एथै मिलह वडाइयां, दरगह पावह थाउ। करे कराए आप प्रभ, सब किस तिस ही हाथ। मारिया पे जीवाल दा, अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ सरनागती, सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, सरन पए प्रभ आपने, गुरु हुआ कृपाल। सतगुर कै अपदेसिय, बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम, अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो वसार रहाउ। गुण गोविंद नित गावी है, अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए, कर डिठे बिस्थार। सहजे सिफती रत्या, पवजल उतरे पार। तीर्थ वर्त लख संजमा।

पास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अत अगली, कोई आन मलावे माई, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस भंडार,

एक सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा संत जन हो।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ दुख कलेश ना।

पाप सगली जाही। हौ तिनके बलिहारने जे गुर की पैरी पाही। साध संगत मन वसे साच हर का नाऊ। सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया। हृदय का आधार रहाव काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल।

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

कीमत किनै ना पाइया सब सुन सुन आख सोए पीर पै कामर फालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना ढाही

रहया सुमार नानक टोट ना आवे तेरे जुगहा जुगहा भंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करह शिंगार गणत गणावने।

तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाउ गुर शब्दी शिंगारिया तन मन पिर कै पास दुए कर जोड़ खड़ी तकै सच कह अरदास लाल रत्ती सच पै वसी पाए रत्ती रंग।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी।

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरे दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सचियार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। नावे अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई।

रहाउ गिण राशी वापारिया तके कुंडा चार मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार बिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वणजारियां स्यों वणज कर गुरमुख।

सोहु प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाई है सो पिर रावे रंग सच सुहागण सा भली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चर डूंघर जाऊं बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर फिर आऊं जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई नानके को रव रहया दूजा।

निर्मल साचो मन वसे सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करने हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाथ पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखे ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

दुख अगला मनमुख बूझ ना होई। सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होई। वेद पकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास। मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हौ सद बलिहारे जास। चहु जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए। जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आप पछाणे घर वसे हौ मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए। श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे। गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए। तू जम डर पै दुख भाग दुख घणो दोहागनी। क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊ। मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊ रहाउ। गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊ। तिस बिन घड़ी ना जीवन।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होय गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होय नानक।

जाने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनहु वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता पिर रावे नार इकतता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपै

अतुल ना तोलिय कथन ना पाया जाय व्यापारी बन जा रिया आए वजून खाए कार कमाव है सच की लाहा मिलर जाय पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाय गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसर मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाई है।

ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है पी विगसे असने जल मह जी अपाए कै बिन जल मरन तने मन रे क्यों छूट है बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अधिको त्यों सुख कणु मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक

आपे खवै दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाई सच मिले सुख होय सच्चा नेहो ना तुटई जे सतगुर भेटै सोय ज्ञान पदार्थ पाई त्रिभवन सोजी होय निर्मल नाम ना विसरै

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाई रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रहो तज जाए भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाए तुरहों विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाए बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह महल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं बिचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाईए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो विचों आप गवाए सच्चे सेती।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावे है सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी,

शुद्ध भाव है सी भली, खोटा खरा ना कोई, गुर सरनाई छुट्टी है, मनमुख खोटी रास, अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास, आपे परखे पारखू पवे खजाने रास, तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए, कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए, गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए, जित तन नाम ना पावे तित

साजी है, एक चानण तेहो लोए, कर्म मिलै सच पाई है, तुर बख्शना मेटै कोई, साध मिलै साधु जने, संतोख वसै गुर पाई, अकथ कथा विचारी है, जे सतगुर माहि समाए, पी अमृत संतोखिया, दरगह पैंदा जाए, कट कट वाजै किंगुरी, अन दिन शब्द सुपाई, बिरले को सोजी पई, गुरमुख मन समझाए, नानक नाम ना विसरे, छूटै शब्द कमाए, श्री राग महला पहला, चित्ते दिसह धौल हार, बग्गे बंक द्वार, कर मन खुशी उसारिया, दूजै हित प्यार, अंदर खाली प्रेम बिन, तै ढेरी तन शार, पाई रे तन तन साथ ना होए, राम नाम तन निर्मलो, गुरदात करे प्रभ सोए, रहाओ, राम नाम तन निर्मलो।

मन मुख जाने अपनी धियां पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मनमुख हों मैं करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का इहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कह वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरे जल पाई है जो बारक दूध माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास में।

जो आया सो चलसी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संती है माल जाल जंजाल सब जग मह दो ही फेरी है बिन नावे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेलसी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार चोआ चंदन लाई है कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिया अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हों मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिय सच नाम सिर शाह पातशाह मैं हर नाम ना विसर हर नाम रतन वेसाह मनमुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला कर दूजा मकाम कर घर बैसना

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होवे।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया। जिस स्यो राता तै सो हुए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा।

पाई रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागू पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाय। जे हर हर कीचै बहुत लोचियै, किरत न मेटिया जाय। हर का भाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरियै, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटियै, सिमरत शास्त्र सो दोह जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का

गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाए।

गुर कै पाणे जे चल है ता अन दिन राचे है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चहो दिस जाहे, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पये किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार मन।

उधार सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले हर

पंडित पर पर वाद विखाण है बिन गुर परम पलाई लख 84 फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सेती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै,

त्रै गुण भरम भलाय, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, या मुंडो हो कुत्था जाय। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाइसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ ज्योत।

शब्द पाती उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हम मैं मार पछाणिया हम तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना जान।

ललता देख कै भज पए सतगुर सरना। सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई। जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन। नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन। श्री राग महला पंजवा। जाको मुश्कल अत बने टोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना। साक पे भज खले सबो भजे आसरा। चुके सब असराऊ केते आवे उस पार ब्रह्म।

पर ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया शास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अपार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किश कीतो ने अपना जिए ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यो ज्यो ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां स्नेहां का खसम आप।

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियोन, लगे ना तत्ती वाऊ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, सहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस भावै तिसै बुझाई जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे पन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाउ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुइया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कारे लायोन, ज्यो भावै तिवै नवाहे जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो पाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हाँ हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हाँ आया सामै ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया, कन कोई कढ ना हंगई, नानक बुट्टा कुग गराउ जियो, हौ वारी घुमा जामदा, इक साहा तुद त्याए दा, उजड़ थेहो वसायो, हौ तुद विटहो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित त्याए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निदान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुर अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखालिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै, पैर धुआं पखा फेरदा, तिस निव निव लगा पाए जियो, सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान इशनान दड़ाया, सब मुक्त हुआ सै सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक वजाए सब डिठिया, तुसे आपे नयन छड़ाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रियान दा, सब सुखाली बुठियां, एहो हुआ हले मीराज जियो।

हुक्म पया गर्भास दूजे पहरे रहन कह बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाइए बन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसह ना जाने मन भीतर धर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रैण कै बन जा रहा मित्रा तन जोबन सिउ चेत हर का नाम ना चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुट है जेत हर का नाम ना चेत प्राणी बिकल भया संग माया तन सिउ रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया धर्म सेती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मेत कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन सिउ चेत चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया बन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दुआले खिन मह भया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस सिउ लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी नुणिया खेत श्री राग महला पहला पहले पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा बालक बुद्ध अचेत खीर पीए खेलाइए बन

पहले पहरे छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमस काम व्यापिया बन जा रहा मित्रा, अंदुले नाम ना चेता राम नाम घट अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गए झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा, सर हंस पलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जिन्हें बन जा रहा मित्रा, आम घटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया सब किछे अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, बिरद भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा, कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा कौ ताणा गुण अंतर नाही, क्यों सुख पावे मन मुखे आवण जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण, ओड़क आया तिन साहया बन जा रहा मित्रा, जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा, अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे।

मुक्त वर पाया अबनासी, ना कदे मरे ना जाया, व्याह हुआ मेरे बाबला, गुरमुखे हर पाया, हर सत सते मेरे बाबला, हर जन मिल जन सुहंदी, एवकड़ै हर जप सुहेली, विच सहुरड़ै खरी सुहंदी, सहुरड़ै विच खरी सोहंदी, जिन पेवकड़ै नाम संभालिया, सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख, जिन्ना मन जिन पासा ढालिया, हर संत जना मिल कारज सोया, वर पाया पुरख आनंदी, हर सत सत मेरे बाबला, हर जन मेल जन सुहंदी, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देव हो नान मैं दाजो, हर कपड़ो हर सुबा देव हो, जित सवर है मेरा काजो, हर हर भगती काज सुहेला, गुर सत गुर दान दवाया, खंड वर पंड हर सुबा होई, एहो दान नार लैर लाया, होर मनमुख दाज जे रख दखल है, सो कूड़ अहंकार कच पाजो, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देव हो दान मैं दाजो, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिल तन।

निद पाए नाउ सरबस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना। श्री राग के संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना अठ मजाहू महापिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई लभ।

ज्यों मरे, मिल मेरे प्यारे प्राण अधारे, गुण साध संग मिल गावे, नानक के स्वामी तार अनग्रहो, मन तन अंक समावे, दखना सोहंदड़ो हबठाए, कोई ना दिसे दूजड़ो, खुलड़े कपाट, नानक सतगुर भेख ते संत, तेरे बचन अनूप अपार, संतन आधार, बाणी विचारिय जियो, सिमरत सास ग्रास

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी, नाथ के नाते सब कै साथे, जप जुए जन्म ना हारी है, नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है, दखना धूड़ी मजन साधखे, साईं थिए कृपाल, लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल संत, सुंदर स्वामी ताम।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए सेना।

तू आपे कमल अलिप्त है, सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा, एक निमख घड़ी कर ख्याल, हर तुदहो बाहर किस नहीं, गुर शब्दी वेख निहाल। सलोक महला तीजा, हुक्म न जाने बहुता रोवे, अंदर धोखा नींद ना सोवे, जे तन खसमै चले रजाई, दर कर सोभा महल बुलाई, नानक करमी एह मत पाई, गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा, मनमुख नाम विहूणिया, रंग कुसुंबा देख ना भुल, इसका रंग दिन थोड़िया, सोचा इसदा मुल। दूजै लगे पच मोए, मूर्ख अंध गवार, बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार, नानक नाम रते से रंगले, गुर कै सहज सपाए, भगती रंग न उतरै, सहजे रह समाए पौड़ी। सृष्ट उपाई सब तुध, आपे रिजक संबाहया, एक वल छल करके खाम दे, मुहो कूड़ कुसत तिनी ढाया, तुद आपे पावे सो करह, तुद ओतै कम ओए लाया। इक ना सच बुझायो न, तिना अतुट भंडार दिवाया, हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हाथ तड़ाया। सलोक महला तीजा, पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है, माया मोह सवाई, दूजै पाए हर नाम वसारिया, मन मूर्ख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता, तिस कबहू ना चेतै, जो देंदा रिजक संभाए। जम का पाहा गलहू न कटिया, फिर आवे जाए, मनमुख किशु ना सूजै अंधले, पूर्व लिखिया कमाए। पूरै भाग सतगुर मिले सुख दाता, नाम वसै मन आए। सुख मान है सुख पैनना, सुखे सुख वेहाय, नानक सो नाओ मनो ना विसारी है, जित दर सच्चै सोभा पाए। महला तीजा, सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास, गुरमति आप पछाणिया, राम नाम परगास, सचो सच कमावना, वडियाई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिसका, सिफत करे अरदास, सच्चै शब्द सलाहना, सुखे सुख निवास, जप तप संयम मने माहे, बिन नावै त्रिग जीवास, गुरमति नाव पाइयै, मनमुख मोहे विनाश, ज्यों भावै त्यों राख तू, नानक तेरा दास पौड़ी, सब को तेरा तू सब सदा, तू सब ना रास, सब तुदै पासो मंग दे, नित कर अरदास, जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

है कर्म प्राप्त होए सत्य रत्ते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई महला तीजा सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै धावत राखै इकत घर आणै जीवत मरै हर नाम बखाणै ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावै सोए महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए सत संगत सिंह बाद रचाए हर दिन दुखिया दूजै भाए रचाए हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सवाही सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हुआ कृपाल हर से

कै पुलड़ गंदे डुम पयास पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याई मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छुड़ाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नावे अग्गे आन निवाए सलोक महला तीजा वेश करे कुरूप कलखणी मन फूटे कूड़ियार फिर कै भाणे ना चले हुक्म करे गवार गुर कै भाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट ना सकी है जो तुर लिखिया करतार मन तन सौंपे कंत को शब्दे धरे प्यार बिन नावे किने ना पाया देखो हृदय बीचार नानक सास वाले सुलखणी जे रावी सिरजनहार महला तीजा माया मोह गवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार भलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे भाई प्यार सतगुर सेवह अपना भवजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावह सच नाम उधार पौड़ी हर जाखल महियल भरपूर दूजा ना ही कोई हर आप बह करे न्याओ कूड़ियार सब मार कढोए सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब

मां जानै जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराओ हसै ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिखिया रस इत संगत निश्चो मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै तां लागै भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत

जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कह, मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेत सनाही जन्म गवायो आलसिया, बिखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जां तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली,

बदते त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का आचार्य एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी।

ए नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव है गा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख है भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तहा तुम जो नायक आचुहु अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहु रवदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुरपूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

मित्र सखा सुप्रीतम पाई, मैं दस्ते हर नर हर है जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हों रह ना सका बिन नाम वखाणे, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरियै जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरियै जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, बिन भागां सतसंग ना लब्भै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलहु जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हम मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हों गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मलुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपूरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम त्याइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली।

प्रीतम दसे तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महल्ले चौथे के माज महल्ला पंजवां चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिनप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश।

रहाओ। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। मोहे रहण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हौ भोली जियो कोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। भाग होवा गुर संत मलाया, त्रब अवनासी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ भोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा, सारुत सहावी जित तुद संभाली। सो काम सुहेला जो तेरी काली, सो हृदय सुहेला जित हृदय तू गुठा। सबना के दातारा जियो, तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौ निध तेरे अखुट भंडारा, जिस तू देहे सो तृप्त अघावे। सोई भगत तुम्हारा जियो।

लाई आसन ऊच सवारिया दियो फिर किर अपने ग्रह में आया जो लड़िंदा सोई पाया तृप्त अगाई रहया है संतो गुर अनुपो पुरख दिखारिया जियो आपे राज ने आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पकारिया जियो जेहा डिठा मैं तेहो कहया तिस रस आया जिन भेद लहया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक एक पसारिया जियो माज महला पंजवा जित घर पिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया अनद बनोद तितै कर सोह है जो तन कंत शिंगारी जियो सा गुणवंती सावड भागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ बचखण जो तन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई प्रधानी सब शिंगार बने तिस ज्ञानी सा कुलवंती सा सबरहाई जो पिरकै रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मलावे जियो खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरत इशनाना निवली कर्म आसन चौरासी इन मह शांत न आवे जियो अनक बरख किए जप तापा गमन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत न आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावै जियो कर कृपा मुहि साध मलाया मन तन सीतल धीरज पाया प्रभ अवनासी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम गोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्याव हो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारी गुरमुख संगी कृष्ण मरारी दयाल दमोदर गुरमुख पाईए होरत कितै ना भांती जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकांती जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समर्थ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबां अनाथां तेरा माना सब किश तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो पाणे उजड़ पाणे राहा पाणे हर गुण गुरमुख गावाहा पाणे परम पवै बहुजूनी सब किश तिसै रजाई जियो ना को मूरख ना को सियाणा वरतै सब किश तेरा पाणा अगम अगोचर बेअंत अथाहा तेरी कीमत कहन ना जाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आगावे नानक मिलन सुपाई जियो माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे भुख व्यापै बहु विद तावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वड समरथा जिये संभाली ता सब दुख लत्ता चिंता रूप गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारक वांगी हो सब किश मंगा दिन दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो हों बलिहारी सतगुर पूरे जिन

आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निरतन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा ते सच त्याई जियो जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किल बिक काटे निर्मल थिया आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनासे दरदा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए।

पोत पोत सेवक संग राता, प्रभ प्रत पाले सेवक सुख दाता, पानी पक्का पीसो सेवक कै, ठाकुर ही का आहर जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुक्म साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावै जो साहिब पावै, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है, जो किस ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही

सो गहर गंभीरा गौहर जीओ माज महला पंजवा सब किश करम है बाहर नाही बाहर टोले सो परम पलाही गुर प्रसादी जिन्नी अंतर पाया सो अंतर बार सुहिला जीओ चिम चिम वरसै अमृत तारा मन पीवै सुन शब्द बीचारा आनंद बनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जीओ जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते।

तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटोह जो मन तन तुद आराधे जीव तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीव सेवड भागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जीव तिनकी शरण परया मन मेरा मान तान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजै नानक कौ तिस प्रभ अगम अगादे जीव माज महला पंजवा तू पेड़ साख तेरी फूली तू सूखम हुआ असथूली तू जल निद तू फेन बुदबदा तुद बिन अवर ना पालिए जियो तू सूत मणिये पी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किन बिख काट हुआ मन निर्मल।

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख।

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मटावे हास मनोरथ पूरन होवे टीटत गुर दरसाया जीओ अगम अगोचर किश मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिटी चूका पुलावा

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किछ बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई है जिन हम किए जीओ जन्म जन्म।

कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारी जियो। अपने जी जंत प्रित पारी, ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो। जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्यानी, जे थिन मह सगल उदारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवां, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थल सोइन चौबारी, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो। संतां से तीरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब दे खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला।

नानक दान किया दुख पंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई।

सगल मनोरथ पूरन होए कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महियल दह दिस वरसाया शांत भई बुझी सब तृष्णा आनंद भया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख भंजन हारा।

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा टाहया जियो, मन पन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जियो, जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किशु ना जापे, अपनिया संता नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जियो, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू, सहज आनंद गावे है गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जियो, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन, सच्चे नाम विटहो कुरबाणो जियो, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जियो, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

जय सागर कटिया जम की पासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप लख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर गोहित।

सा पली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जीओ। सब परोई इकत धागै, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल जिन देखे सब उतरह कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनसिया ब्रह्म भउ तीठा जीउ माज महला पंजवां झूठा मंगण जे कोई मांगै।

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइये जिस सिमरत वार निह चल पाइये नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

पाया माया मोहच कामणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साथ मिले ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणी।

राता। दर सच्चै सो जी पावणिया, पाप पुन की सार ना जानी। दूजै लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग ना जाने। फिर फिर आवण जावणिया, गुर सेवा ते सदा सुख पाया। हम मैं मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा।

जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे तां किन दीऐ सुख नाही पुन दूऐ तीऐ आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मलावणिया आप करे चै आप कराए पूरे गुर कह शब्द मलाई नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मलावणिया माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना।

जामपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई, पाई भगत तेरे मन पाई, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जियो तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवनिया।

तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच वखाणी नानक नाम रते बैरागी

समाणी सुन मन सच समावणिया हों वारी जियो वारी हर कै नाए सोभा पावणिया सतगुर सेव सच चित लाया गुरमति सहज समावणिया रहाउ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल ना पाई अन दिन जल्दी फिरै दिन राती बिन फिर बहुत

सह सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

लख 84 रिजक आप अपड़ाई नानक नाम त्याए सच राती जो तिस भावै सो कार करावणिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर कै शब्द परख परखाया जिन सच पल्लै सच बखान है सच कसवट्टी लावणिया हो वारी जी हो वारी गुर की बाणी मन वसावणिया अंजन माहि निरंजन पाया ज्योति ज्योत मलावणिया रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अति अगम अपारा गुरमुख हो ऐसोई पाई आपे बख्श मलावणिया मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई।

आज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किन चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे शब्द बजावणी।

कलाया। तुद सलाहे नारजा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

सावणिया गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाई ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किछु ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामे जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरे गुर पाई है मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द

निर्मल बाणी शब्द बखान है। सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया। सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया। अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा। परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा। नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जानणिया। माज महला

पात्रे भेद माया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद्ध सत संयम सोई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होए, शब्दे ही फिर ओ पत होए। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर खेलै वडाणी। सो नगुरा जो मर मर जम्मै, नगुरे आवण जावणिया। तिन करतै इक खेल रचाया, ताया शरीरै विच सब किछ पाया। शब्द भेद कोई महल पाई, महले महल बनावणिया। सच्चा साहु सच्चे बण जारी, सच बणंज है गुर हेत अपारी। सच विहाज है सच कमाव है, सचो सच कमावणिया। बिन राशी को वत क्यों पाई, मनमुख भूले लोक सबाई। बिन राशी सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणिया। एक सच बणंज है गुर शब्द प्यारी।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

किस बाज हूँ सच्ची मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवा।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर पर

नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे,

अंतर मन मोह है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मनमुख भूला दूजे भाए खुआए नाम ना लेवै मरै बिख खाए अन्दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गुआवणिया।

निरंजन सुई जिन सिर जीत ने आपे गोई। नानक नाम संभाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाई।

सच राती सच सुन आख बखानिया मनसा मार सच समाणी इन मन दीती सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सची लिब लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओह अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुखदाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मटावणिया, रहाउ निर्मल नाम वसिया मन आई, मन तन निर्मल माया मोह गुआई, निर्मल गुण गावै नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौ मैं मैल गुर शब्दे धोवै, निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी, दर सच्चै सोभा पावणिया, निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया, सो निर्मल।

ते जुहया जम काली माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी वज्जै शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पिड़ बंद नाचै दूजे पाए दुख पावनिया जिसे अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरनी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चे नाही दुख कब ही नाही सुख दाता सेवन सुख पाइन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जीओ वारी सुख सहज समाद लगावणिया जो हर सेवह से सदा सोह सुबा सुरत सुहावणिया रहाउ सबको तेरा भगत कहाई से भगत तेरे मन पाई सच बाणी तुदै सालाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूकै फेरा जां तुद भावै ता नाहीं रचावै तू आपे नाउ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक सस्यों डिवलागी सदही हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरे चाई नौ निध नाम वसया मन आई।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे। हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया। हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराई जित भावै तित कारै लाई। पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवै तां किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई। सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाई दे संतर भवै दूजै भाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्द है दुख पावणिया। धावत राखै ठाक रहाई गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई दूजै भाई बिरथा जन्म गवाई। आप डुबे सगले कुल डुबे कूड़ बोल बिख खावणिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै भाई भगत जा हूं मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई तिन पी तन मह मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई होर के करे कीतै क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा इस गुफा मह अखुट भंडारा इस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मियावणिया। हौं वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पी आवणिया। रहाओ हौं मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान।

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मनावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हौ मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हौ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर सेती चित लावणिया रहाउ गुरमुख जीवे मरे परवान आर जा ना सीजे शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरे कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हौ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे सोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख आन दिन शब्द दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया बाज गुरु है अंध अंधारा

लेकर आए, गुरमुख हृदय उठाए आप आई, नानक नाम मिले बड़ियाई, पूरे गुर ते पावणिया, माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तुन घट अंतर, आपे बणत बनावणिया, हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज ना।

हुई, जिसे आप वखाले सो वेखै कोई। नानक नाम वसै घाट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहिया सब थाई। गुर प्रसादी घर ही मह पाई, सदा सरेवी एक मन ध्याई।

फेरा, जम्मन मरण ना चूकै फेरा, गुरमुख हो ऐसो होमै मारी, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दुही मिलकै सृष्ट उपाई, दुऐ मार जाए इकत घर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानण होवे छोड़ै होमै मेरा, प्रगट शब्द है सुखदाता, अन दिन नाम त्यावणिया, अंतर ज्योत प्रगट पा सारा, गुरसाखी मिटिया अंधियारा, कमल बगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया, अंदर महल रतनी भरे भंडारा।

कि नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया माज महला तीजा हर आपे मेले सेव कराई गुर कै शब्द।

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हौ मैं भरम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती, गुर किरपा ते पावणिया। गुर कै शब्द इहो गुफा विचारी, नाम निरंजन अंतर वसै मरारी। हर गुण गावै शब्द सुहाई, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजै भाई कर लाई, नाम भूले दे सजाई। कड़ी मोहत का लेखा ले वै, रतियों मासा तोल कढावणिया। पे यड़ै पिर चेते नाही, दूजै मुठी रोवै ताही। खरी कवाले कुरूप कलखणी, सुपने फिर नहीं पावणिया। पे यड़ै फिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया। कामन फिर राख्या कंठ लाई, शब्दे फिर रावै सेज सुहावणिया।

पढ़ बुझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह दर सच सुबह पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई किरपा करी ता सतगुर पीट नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माहि पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझ ते बाहर किछु ना होए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंधे ऐसे

कै शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै इको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै, दूजै पाए महा दुख पावै, बिख्या माते किस सूजै नाही, फिर जूनी आवनिया, हौं वारी जीओ वारी, हौं मैं मार मनावनिया, गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवनिया, रहाऊ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावनिया, अकथो कथियै शब्द सुहावै, गुरमती मन सच्चो पावै, सच्चो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावनिया, जो सच रत्ते तिन सच्चो पावै, आपे दे ना पछो तावै, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावनिया, कूड़ कसत किन्ना मैल ना लागै, गुर प्रसादी अन दिन जागै, निर्मल नाम वसै कट भीतर, ज्योति जोत मलावनिया, त्रै गुण पढ़ै हर तत ना जानै, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाणै, मोह व्यापे किस सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावनिया, वेद पकारै त्रिविध माया,

प्रीतम मेरे, तुद बिने अवरना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावनिया, अगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करह तू नह मलाई, पूरे गुर कै शब्द त्याई है, शब्द सेव सुख पावनिया, रसना गुणवंते गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावनिया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महागुबारा, फिर आवन जावनिया, आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावनिया, माज महला पंजवां कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब ते उचा, गुर कै शब्द लखावनिया, हों वारी जीओ वारी, कल मह नाम सुनावनिया, संत प्यारे सच्चे तारी, वडभागी दर्शन पावनिया, रहाउ साधक सिद्ध जिसै कौ फिरदे, ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे, कोड़ ते तीस

मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सिंजापै जिन पिया से त्रिपतासी सच्चे सच अगावनिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला सो तनवंता सो वड साहा।

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन नेह कर्मा कौन सो कह कहाए जियो।

जित तावत रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सोचाल जित पार ब्रह्म त्याई, किन विद कीर्तन गाए जीओ। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरहि उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जीओ। हउमै बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जीओ। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरै, गुरमुख बिद प्रगटाए जीओ। गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई, गुरमुख कीर्तन गाए जीओ। सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, एकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहि समाए जीओ। माज महला पंजवां, प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाल।

गुरमुख मन तन पावणिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा, थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवन हारा, भगती पाए भरे भंडारा, दया तार राखे तुद से, पूरा कर्म समावणिया। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर किरपा दास मदर निहाले, गुण गाव है पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया। एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ मह तुम ही पाला, माया अग्न ना पो है तिनको, रंग रते गुण गावणिया। क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जानणिया। जिसको तू प्रभ पया सहाई,

जिसका नेह चल ताम चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तलमई अल पूरिया रव्या विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना।

तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वादिया जिन्ना प्रेम बशोह हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तोह पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोह इक सहर के नाम बिन अगै लइह खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोय नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होय वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटै हर सोय हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगै

हेठ रंगीला तिस तनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिए गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास रैण मिहाणी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशु ना हो वही लिखिया तुर संजोग बड़ भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां किनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

अलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सुवारियों निश्चल दितियन जाई संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे ताई जिहवा एक अनेक गुण तरी ना।

नाही जरी कूड़ गए डुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिस को नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करहु हरि माज महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेल हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन हर फिर बिन चैन ना पाई खोज दिते सब गैन आप कमाण विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

हर गुरु पूरा आराध्या दरगहा सच खरी सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया

नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैण जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभु पूर्णो मन निमाणी थां हर ओट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू रख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सवाओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तर...

पाया। ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझै लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुझ पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चै नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। तुआ सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल तारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होए, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोवे, अंधा भूल पया जम जाले। वस्त पराई अपनी कर जाने, हऊ मैं विच दुख काले। नानक गुरमुख हऊ मैं टुटे, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाए।

कहया कथना भरिया पर पर धुआ आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ नानक अंधा हुए कै दसेरा है सब समहाए साथ है अग्गे गया मुहे मुह पाए सो ऐसा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िया नाउ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सचियारा।

रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावे तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोय ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां हो है तीनवा सोम हो है दुध कीओ सगली धरती सक्कर हो है खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

मेरवद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई एक तुई महला पहला। ना दादे देहांद आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक जिगर कोई, एक तुई महला पहला। परंदे ना ग्रहाजर, दरख्त आभ्यास कर, देहांद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया।

गुरमुख जानिया, गुरमती आप दुआए सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया, मनमुख सदा कूड़ियार परम फलाणिया, विस्ता अंदर वास साधना जानिया, बिनमावै दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सीहां बाजा चरगा कुहियां, इना खवाले काह काहो खान तिना मास खवाले, एह चलाए राह नदियां विच टिब्बे दे खाले, थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा, जीवाले तां के असाहा, नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावै त्यों त्यों दे ग्राह। महला पहला, एक मास हारी एक त्रिण खाही, एक ना छत्ती अमृत पाहे, एक मिटिया मह मिटिया खाए, एक पौन समारी पौन सुमार, एक निरंकारी नाम आधार, जीवै दाता मरे ना कोए, नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी, पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम त्याई है, दूजी कार लग जन्म गवाई है, विण नावे सब विस पेंजे खाई है, सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आई है, दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है। सलोक महला पहला, तुद भावै ता वावह गावह, तुद भावै जल नावह, जा तुद भाव

जां तुद भावै ता होवै राजे, रस कस बहुत कमावै। जां तुद भावै तेग भगावै, सिर मुंडी कट जावै। जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवै। जां तुद भावै नाहिर चावै, तुद पाणी तू भावै। नानक एक कहै बेनंती, होर सगले कूड़ कमावै। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईयां, चंगा चंगा होई। जां तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया। हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई। विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया। करता आप अपुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलियन, जिन्नी सचो सच कम।

काम क्रोध विष वधाया, भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया, दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया, ओना खसमै कै दर मुख उजले, सच्चै शब्द सुहाया, सलोक महला पहला, सबाही सालाह, जिन्नी त्याया एक मन, से पूरे साह, वक्त उपर लड़ मोए, दूजे बहुते राह, मन किया मती खिंडिया, बहुत पए असगाह, गोते खाहे ना निकलह, तीजे मुही ग्राह, भुख तिखा दोए पौंकिया, खादा हुए स्वाह, पी खाने स्यों दोस्ती।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आके घट हों मैं जाई है लइन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर किस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्म

गुण गाहक एक वन भुखिया भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आईऐ जाइऐ तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइऐ सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै करम ध्यान।

संसार किन समझाई है, सच न धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन करमा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

नानक भैवन जे मरे मुहे काले उठ जाय पौड़ी। सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर के हा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है। सलोक महला पहला सिर खुहाए पी है मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गुआयन। टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा, मुए एक थाऊ पाही अठसठ तीरथ देन ना ढोई। ब्रह्म

इत के होम जग सद पूजा पै कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नहाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच

खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोई कोई कोई कोई सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत धोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाहि, रत्न पदार्थ काट ही माही, पड़ पड़ पंडित बाद बखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना

ज्यों अबनासी सहज समावे। नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर ने काम। रहाउ सहजी आवे सहजी जाई, मन ते उपजे मन माही समाई। गुरमुख मुख तो बंद ना पाई, शब्द विचार छुटे हर नाई। तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश। सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट। बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्य पूरे हर लोग। मन तन देले सहज सुभाई, नानक तिनके लागो पाई। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

मुंडे पड़वाओ जेवा इंद्री एक सवाओ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दो।

मन मानिए अमृत रस पीजे रहाउ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कार करते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

गुरबचनी सत शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाऊ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड कमावे, बहुत उठावे पारु, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारी उपर शारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ, हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जां किश लिया, ता मन भला पाया, हलत ना सोभा पलत ना ढोई, अहला

भोग तिसै का पाणा रहाउ, साहु हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी, जियो पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जी वाले, गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना।

नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताही मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

लब लोभ की ताविसता जपस निरंजन रचस मना काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ काया कमली हंस एयाणा मेरी मेरी करत बिहानीता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछै पछतानीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जैरी जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जैरी मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समाव है अलख ना लखना जाई रे रहाउ सक्कर खंड माया तन मीठी हम तो पांड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करह तेता दुख लागे।

तिनकी पंक होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अग्न बिंब जल पीतर।

केते पशु उपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैकै तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करहु किस मेहर पावहु, डुबदे पत्थर तारी।

राम का मूड़े फिर पाछ पछताहे रे रहाउ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआं बन वसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नराम की

आए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचार तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाऊ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग सुमाई रहाऊ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाव। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुरे अंकस मार जीवा लनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए तावत वर्जे ठाक रहाई।

समाना जित सेवियां दरगाह पत परवाना हर के नाम बिटों बल जाऊं तू विसरह तब ही मर जाऊं रहाऊ तिन तू विसरह जे तुदे आप पुला।

तै पुन तिन हम मैं मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाए, गुर शब्द मारन मन माहे समाहे, तेरे गुण अनेक कीमत नह पाहे, जिसकी बाणी तिस माहे समाणी, तेरी कथ कथा गुर शब्द बखाणी रहाओ, जह सतगुर तह सत संगत बनाई, जह सतगुर सहजे हर गुण।

साई, गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी ग्वार री महला तीजा।

सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस काल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महला तीजा गुवारेरी। सच्चा अमर सच्चा पातशाह।

राम जप हो पवजल उत्तर हो पार रहाव परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया किरपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निध पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया

धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नाही। जैसे धरती मध्य पानी पर गासिया, बिन पग्गा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है सोई कोई है रे।

तुझ ही माही समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जाका कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत तत स्यों मिलिया, हुनरप जन्म नाया ही, गौरी बैरागण महला तीजा, सब जग काल बस है, बांदा दूजे पाई, हम मैं कर्म कमावंदी, मनमुख मिले सुजाई, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले, दरगाह ले छाए रहाओ, लख चौरासी भरम दे, मन हठिया वै जाए, गुर का शब्द ना चीन्यो, फिर जो नी पाए, गुरमुख आप पछाणिया, हर नाम वसिया मन आए, अन दिन भगती रत्या, हर नामे सुख समाए, मन शब्द मरै प्रतीत होए, हम मैं तजे विकार, जन नानक करमी पाईयन, हर नामा भगत भंडार, गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेयड़ै दिन चार है, हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है, गुरमुख गुण गाया, देव कड़ै गुण संभलै, सोहरै वास पाया, गुरमुख सहज समाणिया, हर हर मन पाया, ससुरै पेयै पिर वसै, कहो कित बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है, आपे मेलाइए रहाओ, आपे ही प्रभ देह मत, हर नाम ते आइए, वडभागी सतगुर मिले, मुख अमृत पाइए, हम मैं दुबदा बिन सजाए, सहजे सुख समाइए, सब आपे आप वरतदा, आपे नाए लाइए, मन मुख गर्भ ना पायो, अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करे, फिर पछताणी, गर्भ जूनी वास पाए दे, गर्भे गल जानी, मेरे करते एवं पावदा, मन मुख परमाणी, मेरा हर प्रभ लेख लखाया, तुर मस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया, भेटिया गुर सूरा, मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंदप बीरा, हर हर बख्श मलाए प्रभु, जन नानक कीरा, गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया, हर तत बीचारा, मत मलीन प्रगट पई, जप नाम मरारा, शिव सकत मटाईया, चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन को लिखिया, तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाईऐ संत जनहु, जिस देख हौ जीवा, हर बिन चसा ना जीवती, गुर मेले हो हर रस पीवा, रहाओ, हौ हर गुण गावा, नित हर सुनी, हर हर गत कीनी, हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी, तन तन गुर सत पुरख है, जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया, सो गुर हम कीनी, गुण दाता हर राय है, हम अवगण यारे, पापी पाथर डूब दे, गुरमत हर तारे, तू गुण दाता निर्मला, हम अवगण यारे, हर शरणागत राख लेओ, मूड मुगद निस्तारे, सहज आनंद सदा गुरमति, हर हर मन त्याया, सज्जन हर प्रभ पाया, कर सोहिला गाया, हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया, जन नानक मंगै धूड़ तिन, जिन सतगुर पाया, गौड़ी गुआर री महला चौथा, चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर भज मन मेरे, तर भौजल तू तारी, रहाओ
सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी, पारत्रय त्याग करी ब्रह्मचारी। मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी, खतरी कर्म करे सूर तन पावे।

अल्लाह चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कत कथा सुन हर की गोबिंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन त्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखी।

बणंजह रंग सिउ जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाउ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर बणज सो जन करे

त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए एह माया मोह कटांब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंद कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कहताई जान लाहा दे ता सुख मने टूटै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौ कुर्बानी गुरे अपने जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून नाम।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रत केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करहै हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर लए छडाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाव कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावै हर भगत सुनै तिस सतगुर मिलिया टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िया जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरै हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पैमोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे
राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभु स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरे जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो दे काने जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणी राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाउ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो कित्ते हर पहु नसीऐ हर आपे बख्श लए प्रभ साचा हर आप छुड़ाए छुटिऐ मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिए रहाव मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवे निज कर वसीए गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीए मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लैला हर मन हसीए हर हर आप दया कर देवे ताय अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए ते साकत चोर जिन्ना नाम वसारिया मन तिनकै निकट ना पिटिए मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर जित सेवै लेखा छुटिऐ जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिऐ गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहु मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुरु दाते पंथ बताया हर मिल आए प्रभ मेरी अन दिन अनद पया वड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपूरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढ़ी
राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़ी पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़ी।

कर दंडौत पुन वड्डा ही रहाउ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाही ज्यों ज्यों चल है चुभ दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सत गुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आग है आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निक सह फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

अरे गुरपुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवह संत हो मिल नाम जपाहा विच संगत नाम सदा लै लाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करी हा जियो मिल संत जना रंग माण रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो हर तुठै ढुल ढुल मिलिया जी।

हे प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर

एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही।

हर हर नाम पर गासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हौ तुद विकटण्यो हो सदवारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सत

हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी दियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हर आप खेलै बहुरंगी जियो एक ना भोग पुगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है ना

हर कथा मंगह हर चंगी जीओ हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा हर भगता लोच मन पूरी जीओ आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा रब रहया नहीं दूरी जीओ हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा हर आप रहया परपूरी जीओ हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा हर वेखै आप हदूरी जीओ हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा हर भगत जना राख लाजे जीओ वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नामै हर बिरहो लगाई जीओ मेरा हर प्रभ मित मिलै सुख पाई जीओ हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ मेरा नाम सखा हर पाई जीओ गुण गावो संत जीओ मेरे हर प्रभ केरे जीओ जप गुरमुख नाम जीओ भाग वडेरे जीओ हर हर नाम जीओ प्राण हर मेरे जीओ फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जीओ क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जीओ हर मेलो संत जीओ मन लगा पाओ जीओ गुर शब्दी पाईए हर प्रीत मराओ जीओ वड भागी जप नाओ जीओ मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ हर मेलो संत जीओ गोविंद प्रभ पासा जीओ सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ जन नानक पूरियड़ी मन आसा जीओ गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जीओ मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ मन हर रंग रतड़ा हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बितहु कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसहु संतो जी

सुसने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाय रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थल महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्स मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कोरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जानह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियानप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर भी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लाख खरे जे धंधे।

दीपक दीपाहि अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस ढोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै गौड़ी गुआरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघाना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन देखो बिललाते त्रिग तन त्रिग धन माया संगराते रहाओ ज्यो बिगारी कै सिर दी जह दाम ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम।